गुरुदेव ने वो अलभ्य लाभ हरिवंश नाम, राधा वल्लभ नाम, राधा नाम, शरणागत मंत्र, निज मंत्र, आश्रय छाती में बैठा लेना, ये छाती में बैठालना है, अपने हृदय अपने जीवन धन को दे दिया आपको। कितने तुम गंदे विचार वाले हो, देखो एक लोटा कोई पानी पिला दे उसको, जब देखेंगे तो नम्र आंखें हो जाएंगी। प्यास से व्याकुल था, एक बार इसने पानी पिलाया था। अनंत जन्मों से सुख और शांति के लिए ही मरते चले गए, आज तक जगह नहीं मिली। आज प्रभु की कृपा ने गुरुदेव रूप में आके मुझे स्वीकार किया और आनंद धाम की यात्रा करा रहे हैं। हम कैसे मलिन स्वभाव वाले, नीच स्वभाव वाले हैं, उनकी आज्ञा का, उनके उपदेश का, उनके नाम का कोई महत्व हृदय में नहीं। हमारा तन, हमारा मन, बस हम जो चाहे कर सकते हैं। नहीं भाई, अगर तुम गुरुदेव के शासन में नहीं रहोगे तो काल तुम पे शासन करेगा, कर्म तुम पे शासन करेगा, फिर नष्ट हो जाओगे। अभी तुम कवच में हो तो सुरक्षित हो। याद कर लेना, पूरे जीवन में इसका अनुभव कर लेना, जहां कहीं गुरु आज्ञा का उल्लंघन करोगे वहीं फंस जाओगे, नष्ट हो जाओगे। अगर कृपा न बचाए तो जीवन भर तुम दंड उसका भोगोगे। गुरु रीठा मन मैल मिटावे, सदगुरुदेव भगवान कृपा करके तुम्हारे मन को निर्मल करते हैं। मन निर्मल करने में बड़ा श्रम लगता है, जैसे कपड़े में कोई दाग लगा हो तो धोने वाले को बड़ा श्रम लगता है, बार बार वहां रीठा लगा के मलना, धोना, पीट पीट के उस दोष को निकालना। ऐसे ही परम कृपालु गुरुदेव करते हमको शासन में लेकर डांट कर धुलार कर, ये हरि नहीं करते, ये हरि का कृपा रूप गुरुदेव करते हैं। सच्ची सच्ची गुरुदेव की कृपा ना हो तो परमार्थ का मार्ग ही ढका रहता है, मिलता ही नहीं है। चाहे जितना ज्ञान विज्ञान बगारो, वो अंतरात्मा में मार्ग प्रकाशित नहीं होता है। ये तो गुरु कृपा ही केवलम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। शरणागति का मतलब होता है कुम्हार की मिट्टी, सीधी भाषा में समझ ली। आप कुम्हार की मिट्टी हैं, अब उस मिट्टी के साथ वो कुम्हार कैसा बर्ताव करता है सबको पता है। पहले एक मजबूत डंडा लेकर उसे कूटता है, कहीं भी इतना भी, अगर वो जरा सा सरसों जैसा भी कण रह गया तो वहीं से पात्र फूट जाएगा, वो रस लेने लायक नहीं रहेगा, उसमें रस नहीं रखा जा सकता। एकदम महीन, फिर पानी डाल के पैरों से गूंथता है, फिर हाथ में लेकर उसे बार बार गूंथ के और मुलायम करता है, फिर चाक पे चढ़ाता है, जैसा चाहता है वैसा आकार दे देता है। यह है शरणागति। थोड़ा भी अहंकार रह गया तो वहीं से भागवतिक रस बह जाएगा, और यहां थोड़ा सा क्या, पूरा चलनी है, चलनी में गैया दू है और दोष दयु को दे। गुरु रीठा मन मैल मिटावे, उज्जवल कर दे धोए, धोने दो चुपचाप, हल्ला मत मचाओ, सारे दाग धुल जाएंगे शांति से, जैसी आज्ञा शास्त्र करता है गुरुदेव। शास्त्र को तुम क्या समझोगे, तुम्हारी भाषा में गुरुदेव तुम्हें बोल रहे, समझ में नहीं आ रहा तो दैवी भाषा शास्त्र को तुम समझ जाओगे, नहीं समझोगे। जो गुरु के वचनों पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर देता है उसके जीवन में प्रश्न ही प्रश्न रहते हैं, समाधान करने की सामर्थ्य नहीं रह जाती है। मान लीजिए बहुत बढ़िया अवसर है, होली खेल लीजिए, होली अब रंगभर से रंग का बरसता है, हो ली हम प्रियालाल के
होली, कहते हैं प्रियालाल की होली, अपने अहंकार के, अपने देह के, देश संबंधों के, भोगों के, अभी प्रियालाल के कहां हो? तो कारंग बरस रहा है काम क्रोध का, ईर्ष्या द्वेष का, मान अपमान का। अगर श्यामा श्याम की होली फिर नयो नेह नवरंग नयो रस, ये बरसेगा। आए तो इसी में भींजने के लिए हो वृंदावन, प्यारी जू प्यारे जू क्या ऐसा प्रेम रंग, फिर आप दूसरा रंग ना चढ़े। बोले जे ही गुरुदेव मन को निर्मल किए, तब तह धरे श्याम चरणाम्बुज छुवत न मैलो होए। आ निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। महाराज तुम मांग कर रहे हैं, महाराज मांग कर रहे हैं, मुझे निर्मल मन पसंद है, मुझे छल कपट पसंद नहीं। गुरुदेव मांग नहीं कर रहे हैं। देखो गुरुदेव की हरि से भी बढ़कर उदारता, हरि तो कह रहे हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा, और गुरुदेव किसको ले रहे हैं? जो कपटी है, छली है, दोषों से युक्त है, उसे गले में लगा करके हरि के लायक बना रहे। कैसे? बोले मन मैल मिटावे उज्जवल कर दे धोए, जो हरि को चाहिए वो गुरुदेव रूप से कर रहे हैं। इसीलिए गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, तो गोविंद ने ही बता दिया बलिहारी गुरु आपने, बलिहार करो अपने गुरुदेव की, जिन्होंने मेरे से मिला दिया। नहीं, मेरे से मिलना साधारण बात नहीं, क्योंकि मुझे चाहिए निर्मल मन और मन है तुम्हारा मलिन, कैसे पा सकते थे? गुरुदेव ने मन के मैल को छुड़ा दिया। अब मैल छुड़ाने में श्रम लगता है, उस कपड़े को बार बार रगड़ा जाता है, पीटा जाता है, वो तब निर्मल होता है। ऐसे पिटाई होगी आपकी, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, एक दाग थोड़ी है, बहुत दाग है। पिटाई का तात्पर्य है वचनों का आपके ऊपर शासन, वचन का शासन। वचन आधीन सदा रहें, रूप समुद्र अगाध, प्राण रवन सो कत करत बिनु आगस अपराध। लाल जू महाराज हमारी महारानी जू के कैसे अधीन है? वचन आधीन सदा रहें। लाडली जू का शब्द और अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी का सिर झुकाकर स्वीकार करना, यह है प्रेम संबंध। वचन आधीन सदा है। त्रिभुवन के जितने भी बड़े बड़े महात्मा ऋषि सब हुए हैं, इन्हीं लालजू महाराज के चरणों की रज से हुए हैं, इन्हीं चरणों का आश्रय लिया है। हमारे लालजू महाराज हमारी प्यारी जू के कैसे, इसीलिए हम रस चर्चा करने में घबराते हैं। मलिन बुद्धि जब नाम नहीं जप पा रहे, सिद्धांत नहीं से नहीं चल पा रहे, तो प्यारी जू की लीलाओं में तुम्हारी क्या बुद्धि होगी? पहले सिद्धांत पुष्ट कर लो, पहले देह भाव से मुक्त हो तो रस भाव में तुम्हारा प्रवेश हो। प्यारी जू की रसमय लीला में बड़ा दुर्लभ विषय है। ये वृंदावन धाम है, प्रिया प्रीतम का महल है, यहाँ की कृपा से पहले हृदय की मलिनता नष्ट हो, स्त्री पुरुष भाव नष्ट हो, भोग भावना नष्ट हो, तब जाके कहीं हम ऐसी अध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंचे जहां प्यारी जो हमें प्राण प्यारी लगने लगे। श्री राधा जुग चरण प्रीति उपजय अति भारी, तब तो ये रस समझ में आवे। गुरुदेव ने मन को निर्मल किया तो निर्मल मन की मांग करने वाले श्री श्याम सुंदर उसके हृदय में पधारे। खत्म खेल, अब कोई मैल छू नहीं सकता, क्योंकि स्वयं प्रभु हृदय में विराजमान हो गए। तभी श्रीमद राधा सुधा निधि में महाप्रभु कह रहे, कर्माश्रुति बोधितानि नितराम कुर्वन्त कुर्वन्त मा, गूढ़ाश्चर्य रसास्रगादि विषयान ग्रहणंत मुंचन्तु वा। वो महापुरुष शास्त्र के अनुसार कर्म करे या ना करे, वो विषयों को ग्रहण करे या त्याग दे, कोई फर्क नहीं, क्योंकि अब अंदर श्री लाल प्रिया विराजमान हो गया, अब कोई मल नहीं छू सकता। पर हमारा चश्मा तो मल वाला लगा है, तो हम वहां भी मल का ही दर्शन करते हैं। ये रस जान दूध सिंघिनी को कनक पात्र ठहरावे,
कुंदन बने ताप जग सही सही तब रस परसन पावे। ये सिंघनी का दूध है वृंदावन का प्रेम रस, इस स्वर्ण पात्र में टिकता है। गुरुदेव के बच्चा बन जाओगे तो वो तुम्हें स्वर्ण पात्र बना देंगे। कुंदन बने ताप जग सही सही तब रस परसन पावे। ये जो नाना प्रकार की गर्म हवाएं चल रही हैं, काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष राग आदि की, गुरुदेव के वचन के अनुसार चलने वाला शिष्य वो आनंद पूर्वक सहन करता है। जैसे एक किसान ऐसे सर्दी के समय में जब आप रजाई छोड़कर निकलना नहीं चाहते, वो बहुत कम वस्त्र धारण करके गेहूं की फसल में पानी लगाता है, पूरा कांपता रहता है ऐसे पूरी रात रात पानी, जो किसान जन है वो जानते हैं। पर उसको शीतलता लगती, पर शीतलता का दुख नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि 2 महीने बाद इसमें 50 मन गेहूं पैदा होगा, हमारा परिवार सुखी पूर्वक 1 वर्ष इसमें भोजन पाएगा। 1 वर्ष जीने के अन्न के लिए वो इतने शीतलता के कष्ट को आनंद पूर्वक सह लेता है। वो अनंत काल तक प्रियालाल के समीप हम सुख पूर्वक रहेंगे, उसके लिए हम काम क्रोध नहीं सह सकते, हम विकार नहीं सह सकते। बोले बहुत कष्ट होता है इनके सहने में, मानते हैं, क्योंकि आप अंतःकरण धर्म से तदात्म्य, लेकिन आपको जेल हो जाए तो फिर क्या करोगे? आपसे अपराध बन गया, आप जेल भोग रहे हैं, 20 साल की सजा हो गई, अब वहां तुम्हें रखा है क्या सब भोग? जो मिलेगा खाओगे, जैसे आचरण कराए जाएंगे वैसे वहां करोगे, थोड़ा भी बोले तो 4-5 मिल के तुम्हें पीट देंगे। अब उस समय मन को ना वो योगी है ना तपस्वी है, लेकिन सहता है ना, मन को समझा के पूरा जीवन काटता है ना जेल में। तो आप ऐसा मान लीजिए कि अनंत जन्मों के अपराधों से मुक्त करने के लिए हमें अवसर मिल गया, मन को समझा लो भाई, अब ये जन्म हमने श्यामा श्याम को दिया, तुम चाहे जितना उलरो, चाहे जितना संकल्प विकल्प करो, अब हम तुम्हें भोगों में नहीं फंसने देंगे। कुंदन बने ताप जग सही सही, ये शब्द ही याद नहीं कर रहे आप, सहत सहत बाढ़े भगत, ये शब्द ही नहीं है अपने लोगों के हृदय में। लाडली जू के लिए किसने प्राण समर्पित किए हैं? हम अपने मन को समर्पित हैं, भोगों को समर्पित हैं, अनुकूलता को समर्पित हैं, सम्मान को समर्पित है, लेकिन प्यारी जू प्यारे जू को कौन समर्पित है? बड़ा गूढ़ विषय, इसीलिए तुम्हारी वृत्ति तुम्हें धोखा दे रही है। नहीं नहीं, सावधान हो जाओ। तात मात सुत दार देह में मति अरुझ है मति मंदा, है मति मंद हित कुशोर को होए चकोर तू लख वृंदावन चंदा। जब आप सहना शुरू कर दोगे तो आपको इनाम मिलना शुरू हो जाएगा। क्या बोले? रूप माधुरी ध्यान समावे, हर प्रतिकूलता को सह गया, कुछ नहीं बोला, शांत है प्रभु, जैसा आप करो, जोई जोई प्यारो करे सोई मुझे भावे, शांत अंदर आग लगी बाहर से शांत बैठा है, वो देख रहे हैं प्यारे मेरे लिए ये सह रहा है। अब क्या हुआ? बोले रूप माधुरी ध्यान समावे गुण गावे गोविंदा, हृदय में

माधुरी विराजमान है, प्रिया प्रीतम संग है, अब हो लिया तो आनंद ही आनंद, आनंद के मार्ग में हमारा प्रवेश हो गया है। अब चूकिए मत, मां मुनिस्मर बार बार भगवत स्मरण करें। अपने लोगों को जो प्राप्त हुआ है बहुत दुर्लभ है। कह रहे कि जितने भी तीर्थ हैं भारत में, विश्व में, कहीं भी, सब तीर्थों का अवगाहन करे एक आदमी, और एक वृंदावन की रज को ऐसे लेके ऐसे रख ले तो इसके करोड़वें अंश के बराबर कोई तीर्थ नहीं। ये कहानी नहीं कि ऐसे कही गई हो। क्यों? क्योंकि जिनके चरणों को पूरा विश्व नमन करता है वो लालजू महाराज, जिन गोरे चरणों को अपने हृदय रूपी संपुट में छुपा के रखते, उन चरण चिन्हों से चिन्हित ये भूमि है। तज तीरथ हरिराधिका

प्रभु। यहां वृंदावन में एक कदम चले, तीर्थराज प्रयाग के वास और आह्वान का फल आपको मिल रहा है। कैसे अपार महिमा। देखो, जैसे दूध पीने से सद्या शक्ति तुरंत बल आता है, तो उस बल का प्रयोग आप कहां कर रहे हैं। खास बातें हुई, आप दूध पी के कर क्या रहे हैं, उस बल का प्रयोग किधर कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं या सार्थक कर रहे हैं। यहां का बहुत एक एक कण अपार शक्ति से संपन्न है, हम इसका प्रयोग कहां कर रहे हैं। हमारे रहनी पर इसका बहुत बड़ा फल टिका हुआ है, हमारी रहनी गलत हो रही है। हमारा जो महापुरुषों के द्वारा वृंदावन सेवन करने का भाव रहा है, उससे बिलग हो रहा है। इसीलिए ये प्रभाव जो वर्णन किया जा रहा है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। भला ऐसा कैसे प्रभाव हो सकता है। एक एक पग पर यहां प्रयाग, प्रयागराज को पावन करने की सामर्थ्य किसी और तीर्थों में नहीं, क्योंकि सब तीर्थ प्रयागराज में अपने को पावन करते हैं। जब वो कुंभ पड़ता है, प्रयागराज यहां की परिक्रमा करके एक बार रज में लौटते हैं, और फिर इतनी सामर्थ्य आ जाती कि 12 वर्ष तक सब तीर्थों को पावन करते रहते। फिर यहां पग पग पर प्रयाग है। जेहि ब्रज केल निकुंज मग पग पग होत प्रयाग। गुरु ने बतायो राधा मोहन हु गायो सदा, सुखद सुहायो वृंदावन गाढ़े गहिरे। सदगुरुदेव ने बताया और स्वयं प्रिया प्रीतम ने अपने श्रीमुख से जिस महल का जस गाया, ये वृंदावन धाम है, इसे बहुत गाढ़े से पकड़ लो। गाढ़े से पकड़ने, कुछ भी हो जाए वृंदावन के सिवा हमारे जीवन में, किसी भी तीर्थ या किसी भी पुरी या किसी भी धाम का कोई आश्रय नहीं रहेगा, केवल वृंदावन। आप गृहस्थ हैं, बाहर जाइए, वृंदावन भाग के आइए। जैसे छुट्टी होने पर अपने घर जाते हैं, ऐसे आप ड्यूटी के लिए बाहर जा रहे हैं, आपका घर श्री धाम वृंदावन है, ऐसे आश्रय से पकड़ो। या इस सीमा के बाहर प्राण भले निकल जाएं, जीवित नहीं जाएंगे, या ऐसा नियम, दोनों भाव आपको श्री जी से मिला देंगे। बड़े भाग्य हैं जो वृंदावन वास कर रहे। कह रहे अद्भुत अद्भुत महिमंडन परे ते परे, जीवन को लाहु हाहा क्यों न ताहि लहुरे। बड़ा अद्भुत वृंदावन, बड़ा अद्भुत वृंदावन। ये ब्रह्मा की सृष्टि से परे है, भगवान शेष जी के फण में विराजमान ब्रह्मांडों में नहीं, ये भगवान की चिदानंदमयी सृष्टि है। यहां हमारे नेत्र चूंकि पार्थिव है, इसलिए हम नहीं देख पा रहे, पर महापुरुष जन कहते हैं अगर जीवन का लाभ लेना है तो वृंदावन धाम को हा हा हा हा कह के तात्पर्य कि हाय इतना बढ़िया अवसर है और आप अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। थोड़े से सुख के लिए, थोड़े से जीवन में हम कैसे फंसते चले जा रहे हैं।

0: ये मुक्त होने का अवसर, फंसने का नहीं। कैसे समझाएं? बस जैसे आंखों का अंधा उसे कहा जा रहा है आगे कुआं मत गिर जाके, उसको लगता है हमें बहला रहे हैं, हमारा अभ्यास हम निकल जाएंगे। हमारी ऐसी कुछ दशा है, शास्त्र गुरुजन कहते हैं आगे गड्ढा है, गिर जाएगा तू। ओ तुम क्या जानो, हम बहुत बार पार हुए हैं, अब भी पार हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम जिसे देख नहीं पा रहे उसे संबोधन करके तुम्हें बचाना चाहते हैं। बोले आनंद को घन छायो रहत निरंतर ही सरस सुदेश तो पपीहापन बहुरे। वृंदावन का रंग कौन खेल पाएगा? जो पपीहापन में होगा, चातक का प्रण। जैसे चातक पी पी कह के पुकारता रहता है और अपने मेघ प्रीतम को देखता रहता है, मेघ प्रीतम गड़गड़ाहट से ओले बरसा के उसे पीड़ा पहुंचाता है। दूसरे पक्षी कहते ले इसका फल, बहुत पी पी कर रहे थे, देखो ना डांट रहा है मेघ और ओले बरसा रहा है तुम पर। तो कहता है ये तुम्हें लग रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरा प्रीतम आनंदित हो रहा है। जैसे कोई अपने प्यारे के ऊपर फूलों का श्रृंगार करे, ऐसे मुझे ओले लग रहे कि मेरे मेघ के द्वारा बरसाए हुए ओले मुझे पुष्प की तरह सुखद लग रहे। पपीहा पन गहुरे, हमारे प्रीतम के द्वारा दी गई प्रतिकूलता, बड़े बड़े दैवी शक्तियों के द्वारा दी गई अनुकूलता से भी बहुत भारी है, सुखद है। ध्यान देनिया, बने तो रघुबरते बने, बिगड़े तो भरपूर तुलसी औरन ते बने तावन। हमारी प्यारी जू के द्वारा किया हुआ विधान हमारे लिए सर्वोपरि है। भारी से भारी प्रतिकूल परिस्थिति भी हमें महासुखद लगनी चाहिए, क्योंकि मेरी प्यारी जू का विधान। बोले इसमें प्यारी जू क्या करेंगे, वो हमें गाली दे रहा था, तो आप शरणागत नहीं है क्या? है तो फिर आपकी तरफ अंगुली कैसे उठ सकती है, आपकी तरफ आंख कोई कैसे दिखा सकता है? ये हमारी प्यारी जी से पास हुआ है कि तुम्हें गाली दी जाए, जिसे अब पता चले कि तुम्हारा अहंकार कितना है। बिल्कुल आप विधान में हैं, बिना विधान के आपके साथ कुछ नहीं हो सकता। और आपसे सत्य कहते हैं, जीवन भर के अनुभव को कहते हैं, जहां कहीं जले तो गलती हमारी हुई, प्रिया प्रीतम की नहीं, पूरे जीवन का अनुभव खुली बात कहते हैं। कभी हमें जलन हुई, कभी असंतोष हुआ है, कभी हमें विषाद आया है, तो उसमें मेरी सोच की गलती हुई है प्रिया प्रीतम की तरफ से, कभी नहीं, कहीं नहीं। अक्षर अक्षर का चिंतन, क्योंकि अपने लोग कोई बाहर के क्रियाओं का चिंतन नहीं, आंतरिक चिंतन होता है। हमसे चूक हुई तो हमें जलन होगी, हमसे चूक हुई तो हमें विषाद होगा। नहीं, आज तक कभी विषाद, भले कोई गाली दे, भले कोई मारे, भले भूखे रहे, विषाद नहीं हुआ। विषाद तब हुआ है जब हमारी चूक हो गई है, हमारा चिंतन बिगड़ गया है, हम वस्तु चिंतन की जगह व्यक्ति चिंतन किया, तभी हम जले, तभी हम परेशान हुए हैं। पपीहा का प्रण लेने वाला वृंदावन के रंग में खेलता है। अपने प्यारे के द्वारा दी गई प्रतिकूलता, यदि प्रतिकूलता नजर आती है तो प्रेम कैसा आपका, यही तो खास बात है। हम श्री जी के, हमारे माई श्यामा जी को राज बोल दिए, अंतर में देखो ये बात गई क्या, हमारे माई श्यामा जी को राज। एक बार मजनू लैला के दीवाने, सब कोई जानता है लैला राज घराने से थी, उसने संपूर्ण नगर में गुप्त रूप से जितनी भी दुकानें थे सब पे कह दिया था, अगर मजनू कुछ भी खाना चाहे उससे पैसे ना मांगे जाए, उसकी इच्छा के अनुसार उसको भोजन दिया जाए, क्योंकि मेरे प्रेम में बावला है। जिससे मांगे, जब लोगों ने देखा ना पैसे मांगे जाते थे ना तो कोई प्रश्न होता है, जो चाहे अंगुली ऐसे करे वो वस्तु से दे दी जाए। लाखों मजनू हो गए, रबड़ी पीने वाले, जलेबी हलवा पाने वाले, तो लाखों मजनू तैयार हो गए, हा लैला जलेबी। अब जितनी दुकान वाले हैं सब वहां हिसाब, तो उन्होंने कहा कि इतना एक मजनू कैसे खा सके। बोले है ही नहीं एक मजनू, लाखों मंजनू तैयार हो गए, हम किसको जाने कौन असली मंजनू। तो उनका मंजनू तो एक ही होता है, ये रबड़ी खाने वाले मजनू थोड़े थे। कह दो अब जब दुकान में कोई भी सामान लेने आवे तो सबसे कह देना कल शाम के लैला अपने मजनू से मिलना चाहती। लाखों जितने मजनू बने थे, हा लैला सब, कोई देख नहीं पाता था उनको, पर्दा करके सामने आए और कहा मैं अपने मजनू के दिल का खून लेना चाहती हूं, कटोरा और छुरी सा। रबड़ी पीने वाले मजनू के पैर पीछे होने लगे, जो असली मजनू। आज मेरा प्यार सार्थक हुआ, मेरे प्यार की आज वृत्ति सार्थक हुई, क्योंकि आज कुछ देने का अवसर आया है। चाकू पकड़ी जेवी से बोले बस ये रबड़ी खाने वाले मजनुओं को जेल में डालो, ये है हमारा मंजन। समझ रहे हो, हम रबड़ी खाने वाले मजनुओं की लाइन में आए, खून देने वाले मजनू नहीं है। देख लो अंदर से, देख लो। चातक को पन गहरे, चातक उड़ता जा रहा था, कुछ पक्षी प्रेण में बैठे थे, कहा आओ थोड़ा विश्राम कर लो। बोले नहीं, ये मेघ के जल से सींचा हुआ वृक्ष नहीं है, इसको नीचे के जल से सींचा गया। हम केवल उसी वृक्ष में बैठते जो केवल मेघ से सींचा जाता है। चातक उड़ता हुआ जा रहा था, बधिक ने निशाना लगाया, बाण मारा, गंगा जी में गिर गया, ऐसे चोच कर ली। मानो किसी पक्षी ने पूछा आप तो मरने जा रहा है, भागीरथी का एक बूंद मुख में चला जाए तो कल्याण हो जाता है, चोच के ऊपर उठाए। बोले मेरा नाम चातक है, मैं पीता हूं तो सिर्फ अपने प्रीतम मेघ के द्वारा दिया हुआ स्वाति का बूंद, नहीं तो मर जाऊंगा, लेकिन जीते जी गंगा का एक बूंद अपनी चोच पे नहीं आने दूंगा। यह है चातक प्रण।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके
4: रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं कृष्ण वाणी.
5: यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्म

हे परम पूज्य बृहस्पति देव, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप हमें ज्ञान प्रदान करके हमारा कल्याण करें। बीज मंत्र।

हे विद्यापति, बृहस्पति देव, हम आपके बीज मंत्र का जाप करते हैं। हमें ज्ञान प्रदान करें, हमारा कल्याण करें, हमारी रक्षा करें।

0: When you face failures, don't change your goal, change your strategy. You are listening to the thoughts of Mr. Vivek Bindra, who is a motivational speaker and a corporate trainer.
1: आप सबका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट, बिजनेस कोच। आज बात करूंगा

रसवर्जम रसोपास्या परम दृष्टा निवर्तते। कृष्ण क्या कहते हैं, यू कैन नॉट डिस्कार्ड द लोअर इमोशन अनलेस यू डेवलप अ हायर इमोशन। यू कैन नॉट डिस्कार्ड द लोअर कॉन्शियसनेस अनलेस यू डेवलप अ हायर कॉन्शियसनेस। राइट, सो डेवलप अ हायर कॉन्शियसनेस टू डिस्कार्ड द लोअर वन। एक बार और, पीछे मैंने एक सेक्स अटैचमेंट वाले वीडियो में सिमिलर श्लोक पर चर्चा किया था, डेवलप अ हायर कॉन्शियसनेस टू डिस्कार्ड द लोअर वन। सबसे पहला रूल क्या है, ना तो आप माइंड कंट्रोल कर सकते हो कभी भी, ना ही आप इमोशन कंट्रोल कर सकते हो कभी भी, ना ही आप मूड कंट्रोल कर सकते हो कभी भी। तो आप कर क्या सकते हो, आप इनको रिप्लेस कर सकते हो। कम ऑन, क्या कर सकते हो, रिप्लेस। जैव धर्म में ठाकुर भक्ति विनोद ने 5 प्रकार की चेतनाओं के विषय में चर्चा की थी, आच्छादित, संकुचित, मुकुलित, विकसित और पूर्ण विकसित। ये 5 प्रकार की चेतनाएं होती हैं। पूर्ण विकसित इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस। आप किस कॉन्शियसनेस में जी रहे हैं उसको क्या धीरे धीरे अपलिफ्ट कर सकते हैं। यू कैन नॉट रिजॉल्व अ प्रॉब्लम एट अ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस विच हैज क्रिएटेड इट। एक बार और, कम ऑन, आप उस समस्या को सॉल्व ही नहीं कर सकते जिस चेतना में उस समस्या को उत्पन्न किया गया था। अगर आप लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आच्छादित संकुचित के लेवल पे फंसे हुए हैं और यहां आप समस्या महसूस कर रहे हैं, तो इस समस्या को जिस चेतना ने इस समस्या को प्रोड्यूस किया उसी चेतना में रहकर आप इस समस्या को रिजॉल्व नहीं कर सकते। तो पहला रूल क्या है, अपनी चेतना को उठाना पड़ेगा। कम ऑन, क्या करना पड़ेगा, रेज द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, डेवलप अ हायर कॉन्शियसनेस टू डिस्कार्ड द लोअर वन। परम दृष्टा निवर्तते, नहीं तो तकलीफ रहेगा। अब कृष्ण से छठे अध्याय के 34वें श्लोक के आसपास चर्चा हुई कृष्ण और अर्जुन की, माइंड कंट्रोल करें कैसे। अर्जुन क्या कहते हैं, मुझसे तो माइंड कंट्रोल होता ही नहीं भगवान। तो छठे अध्याय में कृष्ण कहते हैं, असंशयम महाबाहो हो मन दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेया वैराग्येन च गृह्यते। कम ऑन, अभ्यास वैराग्य, अभ्यासेन तु कौन्तेया वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही होगा, नहीं तो असंशयम महाबाहो, हे महान बलशाली भुजाओं वाले अर्जुन, आपसे भी मन्ना दुर्निग्रहम चलम, माइंड कंट्रोल नहीं होने वाला। तो बोला फिर करना क्या है, अगर मैं भी नहीं कर सकता तो करना क्या है। तो कृष्ण ने क्या कहा, कुछ अभ्यास और कुछ वैराग्य। आप जानना चाहते हैं क्या अभ्यास क्या वैराग्य। अभ्यास बिल्ड करना है ऊंची चेतना में आने के लिए, वैराग्य क्रिएट करना है इस चेतना में रोकने के लिए जो सोर्सेज हैं उनसे वैराग्य क्रिएट करना। अभी ये करेंगे कैसे, देखिए ध्यान दीजिए, आपका माइंड बैंक एक स्टोर हाउस की तरह काम करता है। उस स्टोर हाउस में बहुत प्रकार के पुरानी एक्सपीरियंस और पुरानी लेवल की कॉन्शियसनेस के द्वारा इमोशंस ऑलरेडी है, कुछ छुपे हुए, दबे हुए, कुछ उठे हुए, कुछ निकले हुए, अलग अलग प्रकार के उस डेटा बैंक के अंदर इमोशंस हैं। देर आर 36 टाइप्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशन, जिसमें से पहले 12 नेगेटिव इमोशन, बीच के 12 थोड़े न्यूट्रल इमोशन और अगले 12 बड़े स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव प्रोडक्टिव इमोशंस। आपके पास मेमोरीज हैं, आपके स्टोर हाउस के अंदर माइंड में मेमोरीज हैं। उन मेमोरी में एक्सेस करिए पहले किसी इंसिडेंट को जो प्रोडक्टिव इमोशन से जुड़ा हुआ इंसिडेंट था। अब मैं फ्रेमवर्क दूंगा, अभी पूरा समझ में नहीं आएगा आपको जब तक पूरा वीडियो नहीं देखते। पूरा वीडियो देखिए, रुके भी साथ में, मेरे साथ ही रहिए। अभी आप एक फ्रेमवर्क देने वाला हूं, प्रोडक्टिव इमोशन की मेमोरी को वापस रिवाइव करना है। याद करिए वो दिन जो आपकी लाइफ का हाईएस्ट अचीवमेंट का दिन था। याद करिए कोई ऐसा दिन जिस दिन आप बहुत प्रोडक्टिव, बहुत सक्सेसफुल और बहुत ही कॉन्फिडेंट महसूस किए थे। याद करिए कोई ऐसा दिन

उसके बाद फील व्हाट यू फेल्ट, उस समय आपके मन में क्या इमोशंस थे, आप कैसा सांस ले रहे थे, आप कैसा एक्सपीरियंस कर रहे थे, आपके कंधे कैसे थे, आपका चेहरा कैसा था, आप कैसा फील कर रहे थे उस दिन, उन इन तीन प्रश्नों के उत्तर को ढूंढिए। यानी कि दो स्टेप्स हैं, पहला स्टेप वो इंसिडेंट जो मोस्ट प्रोडक्टिव इंसिडेंट था आपकी लाइफ का उसको ढूंढ के लाइए, अपने मेमोरी बैंक से निकाल के लाइए। दूसरा तीन प्रश्न लीजिए अपने आप से, करिए सी व्हाट यू सॉ, देखिए उस दिन क्या हो रहा था आपके आसपास, कौन कौन था, हियर व्हाट यू हर्ड, लोग आपसे क्या बात कर रहे थे आपके साथ में, फील व्हाट यू फेल्ट, आपका फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी कैसा था उस समय, उसको वापस रिवाइव करके लाइए। ये तीन प्रश्नों का जब उत्तर मिलेगा तो वो न्यूरो पाथवे खुल जाएंगे आपके। क्या खुल जाएंगे? न्यूरो पाथवे खुल जाएंगे। अब आपके मेमोरी बैंक से वो वापस आकर के आपके कॉन्शियसनेस में बड़ा होने लग जाएगा। उस समय की जो कॉन्शियसनेस थी वो कॉन्शियसनेस तुरंत वापस आ जाएगी, और वो कॉन्शियसनेस आते ही आप अपने माइंड को, अपने मूड को, अपने इमोशन को डेवलप कर जाएंगे, उस एलिवेटेड कॉन्शियसनेस पे फिर से वापस आ जाएंगे, और उस एलिवेटेड कॉन्शियसनेस से उस मोस्ट प्रोडक्टिव कॉन्शियसनेस, मोस्ट प्रोडक्टिव मेमोरी जिसको आप ट्यून इन कर गए, एफएम चैनल एक समय में एक शहर में 7-8 एफएम चैनल चल रहे होते हैं, आप ट्यून इन करते हैं और बेस्ट एफएम चैनल को चूज करने का अधिकार है आपके पास। एक समय में 700 टीवी चैनल्स हैं आपके टेलीविजन पे, किस चैनल को आप ट्यून इन करना चाहते हैं और किस चैनल को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उसका पूरा अधिकार है आपके पास। देयर इज अ रेंज ऑफ इमोशंस इन योर लाइफ। कपड़े खरीदने जाते हैं आप किसी शोरूम के अंदर, देयर इज अ रेंज ऑफ क्लोथ्स इन द शोरूम। अभी जो पहला कपड़ा मिला ऐसा नहीं कि आप वही लेकर के पहन लेते हैं, आप चूज करते हैं जो आपको सबसे ज्यादा सूट करता है, जो आपके लिए ठीक है, जो आपके लिए अच्छा है। ठीक उसी प्रकार से डू नॉट हैव द एक्सपीरियंस, क्रिएट एंड चूज योर एक्सपीरियंस। एक बार और बड़ी अच्छी बातें बोल देता हूं बीच बीच में मैं, कम ऑन, डू नॉट हैव एक्सपीरियंस, क्रिएट एंड चूज योर एक्सपीरियंस। अपने मेमोरी बैंक में जाइए, निकालिए, ढूंढ के निकालिए, सी व्हाट यू सॉ, उस दिन क्या हो रहा था, लोग आपसे क्या बात कर रहे थे, वो सारी मेमोरी को बड़ा करते जाइए, बड़ा करते जाइए, बड़ा करते जाइए, और जब आपकी कॉन्शियसनेस उस मेमोरी से भर जाएगी, आप उसी कॉन्शियसनेस एलिवेटेड सबसे मोस्ट प्रोडक्टिव कॉन्शियसनेस के पीक स्टेट पे, पीक परफॉर्मेंस प्रोडक्टिविटी वाली कॉन्शियसनेस में एंटर कर गए, जैसे ही आप इस लेवल पे आए, अब क्या होगा, अब आपके पास यही हाईएस्ट मोस्ट प्रोडक्टिव मूड और वो वही माइंडसेट फिर से आ गया। स्टूडेंट्स जो पढ़ाई कर रहे हैं मेरे टूल्स को ध्यान से देखते रहिए, मैं आपके लिए कई ऐसे टूल्स डालने वाला हूं क्योंकि स्टूडेंट्स मुझसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। आजकल मैं स्टूडेंट्स के लिए फ्री सेमिनार की तैयारी भी कर रहा हूं, 15 अप्रैल को मेरा पहला फ्री बड़ा सेमिनार स्टेडियम में होने वाला, इंदिरा गांधी स्टेडियम में, और उसके बाद आपके शहरों तक पहुंचूंगा। देखिए मैं मुख्य तौर पर तीन बातें बताई, पहला स्टेप है चूज योर मेमोरी, सो योर चॉइस ऑफ मेमोरी विल डेवलप, सेकंड स्टेप अ कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्शियसनेस, उस मेमोरी में क्या कॉन्शियसनेस थी, सेकंड स्टेप कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्शियसनेस अभी मिल जाएगा आपको, आपको चॉइस ऑफ मेमोरी, उससे क्या आएगा आपका कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्शियसनेस, इसको बोलेंगे इट विल डिटर्मिन हाउ डू यू फील नाउ, हाउ डू यू फील नाउ। हाँ, तो पहले मेमोरी ढूंढिए, उससे आपका कॉन्शियसनेस बदलेगा, हायर कॉन्शियसनेस हो जाएगा, और तीसरा उसका रिजल्ट क्या आएगा, हाउ डू यू फील नाउ। इमेजिन करिए अगर आप हर समय मोस्ट प्रोडक्टिव पीक परफॉर्मेंस प्रोडक्टिविटी की कॉन्शियसनेस को बरकरार रख पाए तो आपका जिंदगी 10x हो जाएगा। कम ऑन, क्या हो जाएगा, 10x, यू कैन ग्रो 10 times बेटर। इमेजिन करिए अगर हर समय आप उसी कॉन्शियसनेस में रह पाए जो पीक परफॉर्मेंस की कॉन्शियसनेस थी। एक साधक को साधना के लिए उसको सबसे हाईएस्ट कॉन्शियसनेस को वापस आना चाहिए, एक स्टूडेंट को पढ़ाई के लिए अपना मोस्ट प्रोडक्टिव पढ़ने वाले दिन की फीलिंग और उसके इमोशन, उसकी साइकोलॉजी, उसकी फिजियोलॉजी को खींच के लाना चाहिए। इसी प्रकार एक बिजनेसमैन को नेगोशिएशन के दौरान, सेल्स के दौरान, परिवार में, रिलेशनशिप में, जिम में, हेल्थ के लिए, हर समय जब भी आप चाहें एक स्पोर्ट्समैन, एक एथलीट अपनी बेस्ट कॉन्शियसनेस को रिवाइव कर सकते हैं। केवल याद रखिए फ्रेमवर्क, सी व्हाट यू सॉ, फील व्हाट यू फेल्ट, हियर व्हाट यू हर्ड। तो उसका अर्थ क्या हुआ, आपको महसूस नहीं करना है, अपने आप को महसूस कराना है। राइट, यू ट्यून इन टू व्हाट यू वांट टू क्रिएट, महसूस जो इमोशन जो आप एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस होता नहीं है, एक्सपीरियंस क्रिएट किया जाता है, आप कर सकते हैं। आपके जो लॉस्ट प्रोडक्टिव न्यूरो पाथवे थे आप उनको रिकॉल के द्वारा वापस ले आएंगे, वो न्यूरो पाथवे जो आपके लिए खो गए थे, छुप गए थे, दब गए थे, आप उनको वापस रिवाइव करके ले आएंगे, उन्हीं प्रोडक्टिव न्यूरो पाथवेज को जनरेट कर देंगे।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

शानदार ट्रैक के साथ स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। मैं हूँ आरजे अंशली आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ मॉर्निंग एक्सप्रेस। भाई 7 बज चुके हैं और सुबह हो गई है प्यारी वाली, यानी कि अब टाइम हो गया है बिस्तर छोड़कर जाने का ऑफिस। तो देखिए, अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं या फिर अपने घर में ही क्यों रहिए, आज के दिन को अच्छे से एंजॉय करने का तरीका ये है, अच्छे अच्छे गाने सुनिए, गर्मा गर्म मसाले वाली चाय की पहली चुस्की लीजिए और एंजॉय कीजिए रेडियो महारानी पे मॉर्निंग एक्सप्रेस शो को, जहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। यानी कि यहाँ आपको मिलने वाला है एंटरटेनमेंट का डबल डोज, साथ ही आपको मिलेगा वेदर अपडेट से लेकर सोशल स्यापा और क्या कुछ हो रहा है आपके आसपास, यानी कि किस तरह का स्कैम आ गया है मार्केट में, सब कुछ आपको बताने वाली हूँ। लेकिन उसके लिए अभी आपको करना होगा इंतजार, तो बस फटाफट से अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: Life on Wheels, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: जाएगी। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
1: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
0: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, प्लीज मुझे गलत मत समझना। मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती।
1: मैं भी सिर्फ तुम्हारा हूँ सनेरा, सिर्फ तुम्हारा।

0: भी ध्यान लगाओ इरशाद। रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
1: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा,
0: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
1: ये बात तो सही है।
0: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
1: कैसे कैसे?
0: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता हूँ।
1: अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो, अब तुम बोलते रहो मैं तो चली गई मेरी बस आ गई।
0: सुनो सुनो, हेलो टिकट कटवा लेना।
2: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
3: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
4: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: लगता है बॉस हमें टॉस करने वाला है।
1: शानदार ट्रैक के साथ फिर से लौट आई हूँ मैं करने आपसे ढेर सारी बातें। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ अर्चन श्ले आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। फिलहाल टाइम हो गया वेदर अपडेट का। अगर हाईएस्ट टेम्परेचर की बात की जाए 33 डिग्री रहने वाले, इसी के साथ अगर मिनिमम की बात की जाए 23 डिग्री मिलने वाला है आज आपको वेदर का टेम्परेचर, और विंड स्पीड की बात की जाए 16 रहने वाली है, और इसी के साथ ह्यूमिडिटी रहने वाली है 41%। यानी कि आज का दिन रहने वाला है सनी सनी। और वैसे भी अगर आप देख रहे होंगे ना इन दिनों, तो भाई मौसम ने करवट बदल ली है, यानी कि कभी भी आंधी, कभी भी तूफान और कभी भी हो सकती है बारिश। फिलहाल आज तो दिन साफ है, मौसम एकदम क्लियर है, तो आज के दिन को एंजॉय कीजिए। साथ ही सुनते रहे रेडियो महारानी 89.6 FM, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: यू नो सबसे अलग। मेरी बात सुनते हो, रियली लिसन। काश मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा होता। Am I making sense?
1: Not at all. But that'll be 3,000 rupees, please.

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी। सुबह की लेजीनेस को दूर भगाने के लिए सुनते रहिए मॉर्निंग एक्सप्रेस ओनली ऑन रेडियो महारानी।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
2: अर्जुन नहीं होता अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
0: इरशाद
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
2: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा
1: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
2: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
2: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता।
2: अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो मैं तो चली गई मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो हेलो टिकट कटवा लेना।
3: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
4: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है। हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे। इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
5: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा

गाना तो आपने सुना ही है, जियो तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, यानी कि भाई जब जीना है ना तो खुल कर जियो। और अगर जब सुबह की बात की जाए ना तो सुबह की शुरुआत ही होनी चाहिए रन जंप थ्रू और लाइफ को फुल ऑन एनर्जी के साथ, जीने वाले जज्बे के साथ। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ अर्जेंटली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। सो रेडियो महारानी की मॉर्निंग एक्सप्रेस पर आज सेलिब्रेट किया जा रहा है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, यानी कि एथलेटिक्स और फिटनेस के इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करता है आज का दिन। और अगर एथलेटिक्स की बात करूँ तो एक मैजिक है आज के दिन में। कभी आपने सोचा है भागने से, दौड़ने से और चीजों को फेंकने से आपकी फुल बॉडी का वर्कआउट हो जाता है, इसीलिए खास है ये दिन, यानी कि स्ट्रेंथ प्लस स्टेमिना दोनों इम्प्रूव हो जाते हैं और डिसिप्लिन एंड कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो और क्या ही चाहिए, इतना सब कुछ वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी जंपिंग, थोड़ी सी रनिंग एंड थोड़ा सा थ्रोइंग, दैट्स इट। इन सब का कॉम्बो मिलाकर बनता है एथलेटिक डे। अगर आज के दिन की बात करूँ ना तो चलिए आइए जानते हैं इसके पीछे की इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले तो एक्टिव लाइफस्टाइल प्रमोट करता है, साथ ही यूथ को स्पोर्ट्स के लिए इंस्पायर करता है और इतना ही नहीं हमारी हेल्थ एंड फिटनेस दोनों को स्ट्रांग बनाता है। तो बस यही कहना चाहती हूँ, रोज थोड़ा रन या वॉक जरूर कीजिए, आउटडोर एक्टिविटीज को लाइफ का पार्ट बनाइए, स्क्रीन टाइम कम, प्ले टाइम ज्यादा रखिए। तो भाई आज का दिन अकेले नहीं आया, आज का दिन ना अपने साथ एक थॉट लेकर आया, एंड थॉट ऑफ द डे है फिट बॉडी शार्प माइंड। सो माय डियर लिसनर्स, प्रॉमिस कीजिए फटाफट एक स्मॉल स्टेप जरूर ले फिटनेस जर्नी स्टार्ट करने के लिए, और अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.7।

0: सबसे अलग। मेरी बात सुनते हो, रियली लिसन। काश मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा होता। Am I making sense?
1: Not at all. But that'll be 3,000 rupees, please.

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 एफएम कुछ हटके।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

बच्चे होते नाम हमारा होता डब्लू बबलू, खाने को मिलते लड्डू। तो भाई अगर बात की जाए बच्चों की, इन्हें मनाना इन्हें खुश करना बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन कभी आपने ध्यान दिया है कि बच्चों की खुशी सिर्फ उनके स्माइल में नहीं उनके इमोशंस में भी होती है। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ अर्जुन श्री आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं चिल्ड्रंस मेंटल हेल्थ अवेयरनेस डे, यानी कि एक दिन जो बच्चों के मेंटल वेलबींग पर फोकस करता है। और अगर जिनकी बात करें तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं आखिर क्यों जरूरी है ये दिन, क्यों हमें सेलिब्रेट करना चाहिए ये दिन। अगर जिनकी बात की जाए तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चे भी स्ट्रेस एंजाइटी फील करते हैं। हमने कभी सोचा ही नहीं कि बच्चे भी ये सारी चीजें फील कर सकते हैं। यही रीजन है इमोशनल सपोर्ट उनके ग्रोथ के लिए एक इम्पोर्टेंट पिलर की तरह काम करता है, यानी कि हेल्दी माइंड इज इक्वल टू बेटर लर्निंग एंड कॉन्फिडेंस। सो माई डियर पेरेंट्स एंड टीचर, आपसे बस यही कहना चाहते हैं, बच्चों से पल्ली बात जरूर कीजिए, उनकी फीलिंग्स को समझिए, इग्नोर मत कीजिए, साथ ही प्रेशर कम रखे, सपोर्ट ज्यादा दे, सो दैट कि वो आपसे खुलकर सारी बातें कर सके और इसी के साथ स्क्रीन टाइम जरूर बैलेंस करें। सो आज का दिन भी अकेले नहीं आया, आज का दिन अपने साथ एक मैसेज लेके आया, एंड मैसेज ऑफ द डे ये है, स्ट्रॉन्ग फ्यूचर के लिए स्ट्रॉन्ग माइंड्स जरूरी होते हैं, ना कि प्रेशर। सो बच्चों को सिर्फ पढ़ाई नहीं, समझाना और सपोर्ट करना भी उतना ही जरूरी है। सो आज के दिन के इम्पोर्टेंस को जरूर समझिएगा। इसी के साथ एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलता है म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: मोबाइल पर एक क्लिक से आप दुनिया घूम सकते हैं, पर वाहन चलाते समय मोबाइल यूज करने पर आप दुनिया से गुम हो सकते हैं।
1: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही, यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

पासवर्ड स्ट्रॉन्ग नहीं रखा तो हो सकता है अकाउंट गॉन। जी बिल्कुल, वेलकम बैक टू रेडियो हरियाणा। मैं हूँ अर्जेंटली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ पर मैं आज आपके लिए कैसा दिन लेकर आई हूँ ना, जिसके बारे में हम सबको जरूर पता होना चाहिए। आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड पासवर्ड डे। जी बिल्कुल, एक ऐसा पासवर्ड जो हमारे ना जाने कितने अकाउंट को सिक्योर रखता है, यानी कि एक दरवाजे की ताले की चाबी। जो अगर स्ट्रॉन्ग हुई तो इसका मतलब है कि हमारा अकाउंट कोई नहीं छेड़ सकता, और जो अगर थोड़ी सी वीक हुई तो भाई टाटा बाय बाय। अगर बात करें सेफ्टी की तो डिजिटल सेफ्टी सिर्फ और सिर्फ पासवर्ड के थ्रू ही पॉसिबल हो सकती है, ये तो हम सबको पता है। फिर चाहे बात हो फोन हो, सोशल मीडिया हो या फिर हमारा बैंक अकाउंट, सब कुछ यानी कि सब कुछ एक छोटी सी चीज प्रोटेक्ट करता है, हमारा पासवर्ड। लेकिन अगर आपका भी पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 है, या फिर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को एक अपना पासवर्ड बना रखा है, तो वही बहुत सिंपल सा मतलब है इसका, समझ लेना कि आपका डिजिटल गेट खुला छोड़ दिया है आपने स्कैमर्स के लिए, फ्रॉडस्टर्स के लिए। आएंगे आपका डेटा उड़ाएंगे और टाटा बाय बाय कर देंगे। सो माय डियर लिसनर्स, आज एक रियलिटी चेक लेकर आई हूँ, एंड रियलिटी चेक ये है कि जब भी हम बहुत इजी सा पासवर्ड रखते हैं या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ एक पासवर्ड के तौर पर रखते हैं ना, तो वो हैकर्स के लिए बहुत इजी हो जाता है गैस करना, और हमें लगता है कि कोई गैस ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि जैसा हम सोच रहे हैं ना, हमारे जैसे ना जाने कितने सारे लोग हैं जो सेम गलती करते हैं, एंड इसीलिए एक कॉमन पासवर्ड पाया जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बस यही बताने आई हूँ आज आपको कि किस तरह से आपको स्मार्टली अपने पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग करना है। तो भाई पासवर्ड ऐसा रखो जो आपको याद रहे पर किसी और को समझ ना आए, जैसे कि मिक्स ऑफ लेटर्स हो सकते हैं, नंबर्स ऑफ सिंबल्स हो सकते हैं। और हाँ, इतना ही नहीं, एक काम जरूर कीजिएगा, आज के दिन अपना पासवर्ड चेक जरूर कीजिए। अगर आपको लगता है ना कि मेरा पासवर्ड वीक है, तो भाई तुरंत चेंज कर दीजिए, क्योंकि डिजिटल दुनिया में स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ही आपका असली बॉडीगार्ड होता है। सो माय डियर लिसनर, अपने बॉडीगार्ड को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाइए, और साथ ही सुनते रहे रेडियो महारानी 89.6 FM म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: अपनी वाइफ को हैकर्स और रोड के माइकल शुमा को वर्नबी से बचा के रखो। हैकर्स ऐसे फिशिंग करते हैं जैसे हम फ्री समोसे का पोस्टर देख के दौड़ते हैं। और तुम शेड लिंक मत खोलना, वरना तुम्हारा डेटा उड़ जाएगा इतनी स्पीड से कि गूगल मैप्स भी बोल देगा रिकैलकुलेटिंग लाइफ। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखो, पासवर्ड 123 मत लिखना, ये देख के तो हैकर भी बोल देगा भाई इतना आसान क्या। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाओ, एप्स अपडेटेड रखो, वरना स्कैमर्स पार्टी मनाकर तुम्हारे ही अकाउंट में नाचने लगेंगे।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

जब बात ट्रेवल की आती है ना तो हम लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि फिर ये भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं हम अपनी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, क्योंकि एक्साइटमेंट ही इतनी होती है। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। सो आज मैं आपको ये बताने आई हूँ कि ट्रेवल एक्साइटमेंट में प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज मत करना। अगर बात की जाए ना ट्रेवल टाइम की, तो आजकल ना एक ट्रेंड बन गया, एंड ट्रेंड क्या है, एयरपोर्ट जाते समय चेक इन या फिर फ्लाइट के टाइम बोर्डिंग पास की फोटो हम लोग जरूर शेयर करते हैं, ये दिखाने के लिए कि हम लोग तो चले कहीं घूमने। लेकिन पता है एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये आदत आपकी सिक्योरिटी के लिए डेंजरस हो सकती है। तो भाई चलिए बात कर लेते हैं रिस्क की, कि किस तरह के रिस्क आ सकते हैं। सबसे पहले बात की जाए बोर्डिंग पास की, तो आपने देखा होगा बोर्डिंग पास के ऊपर एक बार कोड या फिर QR कोड होता है, उसमें हिडन होती है आपके इम्पोर्टेंट डिटेल्स, जैसे कि आपका नाम, PNR नंबर, फ्लाइट डिटेल्स, सीट नंबर, इवन फ्रीक्वेंट फ्लायर। तो देखा कितना डेंजरस है। तो एक बार जरूर सोचेगा कि जब कोड आप ऐसे ओपनली शेयर कर रहे हैं, अगर किसी ने स्कैन कर लिया तो वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है, यानी कि आपकी इन्फॉर्मेशन का मिसयूज हो सकता है। सबसे पहले तो आपकी ट्रेवल डिटेल क्रैक की जा सकती है, और इतना ही नहीं पर्सनल डेटा मिसयूज हो सकता है, साथ ही आपका अकाउंट एक्सेस या फिर फ्रॉड का रिस्क बढ़ सकता है। सो माय डियर लिसनर्स, बी स्मार्ट, बोर्डिंग पास की फोटो कभी शेयर ना करें, अगर शेयर करना ही है तो बार कोड ब्लर करें। जी वैसे भी आजकल ना एस्थेटिक का जमाना है, तो हम सारी चीजें ब्लर ब्लर रखते हैं, एंड साथ ही अपनी पर्सनल डिटेल्स हाइड जरूर करें, सभी भी आप किसी भी तरह का कोई पोस्ट करते हैं। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखिए, सेफ ट्रेवल करें, स्मार्ट रहे, और सुनते रहे रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

ये गर्मी तो भाई आपकी गर्मी को भगाने के लिए ना मैं लेकर आई हूँ ठंडी ठंडी आइसक्रीम। आई नो आप ही बोल रहे हो कि अंजलि तुम तो हमेशा फिटनेस वाले फंडे लेकर आती हो, लेकिन आज ये आइसक्रीम कैसे लेकर आ गई? तो भाई इसमें भी अपना ही मजा है। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आज अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। फिलहाल तो मैं आज एक ऐसी स्टडी लेकर आई हूँ जहाँ पर ये बताया गया है कि कभी कभी अगर आप आइसक्रीम खाते हो ना तो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए हार्मफुल नहीं बल्कि हो सकते एक प्रोटेक्टिव। बिल्कुल भाई, क्योंकि जिंदगी में से अगर मिठास हटा दी जाए, लेकिन अब ये स्टडी ने भी प्रूव कर दिया है कि आप कभी कभी आइसक्रीम खा सकते हो। अब जब बात कर रहे हैं स्टडी की, तो सबसे पहले इसकी रियलिटी चेक को जान लेते हैं। कहा जाता है कि जो ये डेयरी फैट्स है उतने विलन नहीं होते जितना हम इन्हें मानते हैं। यानी कि अगर आप आइसक्रीम एक मॉडरेट अमाउंट में खाते हो, एक क्वांटिटी में खाते हो ना कभी कभी, तो ये आपके लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन हाँ, एक्सेस अमाउंट में मत खाइएगा क्योंकि इससे हार्ट डिजीज बढ़ सकती है। तो भाई यहाँ पर जो एक सबसे बड़ी की है वो है बैलेंस। अगर आप बैलेंस में खाएंगे ना तो आप एंजॉय कर सकते हो गर्मियों में ठंडी ठंडी आइसक्रीम। यानी कि सिंपल सा बैलेंस आपको ये बनाना है कि आप अगर एक स्कूप आइसक्रीम खाते हो तो आपके चेहरे पर स्माइल लेकर आएगी, और वहीं अगर आप डेली टब खाते हो ना तो ये जरूर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। सो माय डियर लिसनर्स, आज ही गिल्ट फ्री होकर आइसक्रीम एंजॉय कीजिए, लेकिन भाई से अपना लंच ब्रेकफास्ट एंड डिनर मत बनाइएगा। सो एंजॉय कीजिए इस गर्मियों में ठंडी ठंडी आइसक्रीम को। सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

मोबाइल का क्विक रिमाइंडर। डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके। ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
4: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
5: बहुत कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो आशा।
4: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी

0: महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

शानदार सुबह के साथ एक बार फिर से लौट आई हूँ मैं आपसे करने ढेर सारी बातें। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ अर्जेंटली आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ मॉर्निंग एक्सप्रेस। और वैसे भी मैं मॉर्निंग एक्सप्रेस पे ना फिटनेस वाले फंडे आपके लिए लेकर आती हूँ। तो सर कहा जाता है कि जब आप बादाम खाते हो तो आपकी याददाश्त अच्छी रहती है। वो अलग बात है कि आप रात को बादाम भिगोना ही भूल जाते हो। और अगर इसके बेनिफिट्स की बात करूँ तो भाई ब्रेन को हेल्दी रखता है, हमें स्ट्रांग बोन्स देता है, साथ ही हमारी स्किन को हेल्दी रखता है और हमारे हार्ट हेल्थ का भी ध्यान रखता है। तो भाई बहुत सारे बेनिफिट्स हमें एक बादाम से मिल सकते हैं। और साथ ही प्रोटीन, फाइबर, विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है ये छोटा सा बादाम। तो बस यही कहना चाहूंगी कि अपनी रोजाना डाइट का इसे पार्ट जरूर बनाइए, सुबह भीगे हुए बादाम को जरूर खाइए। एंड बहुत सारे तरीकों से आप इसे खा सकते हो, स्मूदी में डाल सकते हो, इवनिंग स्नैक्स में ले सकते हो। तो भाई एक बादाम लेकिन फायदे बहुत सारे, तो जरूर कीजिए इस बादाम को अपनी डाइट में इंक्लूड। और साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, मिलता है म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी के

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
2: अर्जुन नहीं होता अर्ज अर्ज।
3: शायरी पे ध्यान लगाओ।
2: इरशाद
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
2: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा
1: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
2: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
2: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता हूँ।
2: अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो मैं तो चली को मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो हेलो।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

बहुत सारी मस्ती के बाद, बहुत सारी अपडेट्स के बाद और बहुत सारे ट्रेंडिंग म्यूजिक के बाद फाइनली अब टाइम हो गया मेरा यहाँ से जाने का। और सुबह 7 बज रही थी, अब 10 बजने वाले हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरा इंतजार जरूर कीजिएगा। आप फिर मिलेंगे कल सेम टाइम सेम प्लेस ओनली ऑन रेडियो मारानी 89.6 FM पर। लेकिन तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, साथ ही एंजॉय कीजिए रेडियो महारानी के मॉर्निंग एक्सप्रेस के साथ बाकी शोज को, और बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

अभी तो मैं बस एक ही बात बोलना चाहूंगा कि शाम का भूला सुबह आ चुका है। स्वागत है सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ और शो चल रहा है फरीदाबाद की गलियों से। और फरीदाबाद की गलियों से मैं आज खूब सारी बातें होने वाली है। अगले एक घंटे तक आप सभी के साथ जुड़ा रहूंगा। डोंट वरी इफ यू थिंक के मोनिक नहीं आएगा, मोनिक आएगा। आजकल थोड़ा सा लेट हो जा रहा है बेचारा, तो वो आएगा। डोंट वरी, अगले हफ्ते से वही कंटिन्यू करेगा। मैं तो बस सब्स्टिट्यूट हूँ और कभी आप लोगों को उसकी आवाज़ मेरे शो में भी सुनने को मिल जाएगी। की फर्क पैंदा है, हम दोनों एक ही यूनिट है, मतलब रेडियो महारानी सुन रहे हो ना, बस समझ लीजिए। खूब सारी बातें यहाँ पर होती रहेंगी। और अगर बात करें आज के तापमान की, तो तापमान कुछ ऐसा रहेगा कि दिन में आपको 34 डिग्री तक टेम्परेचर देखने को मिलेगा, वो भी मैक्सिमम, जहां पर कल 35 डिग्री तक पहुंचा था। और अगर AQI की बात करूं तो एयर क्वालिटी इज़ ऑल्सो गुड, मतलब ठीक है, अभी सेटिस्फैक्ट्री वाले एरिया में है, 100 के आसपास ही है, तो कह सकते हैं हाँ पोल्यूशन है, मगर आप लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। और जो ये बीच में बारिश हो रही है ना बार बार, ये सिलसिला अभी जारी रहेगा कुछ दिनों तक। और देखो फरीदाबाद की गलियों में हम लोग फरीदाबाद की सारी अपडेट्स के बारे में बात करते हैं, तो अगर आप लोगों को भी कोई शिकायत है फरीदाबाद में तो वो भी आप लोग शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। नंबर है जी 9654896896। फिलहाल रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए खूब सारे गाने चलाने वाला हूँ, मस्ती भी होगी, बातें भी होंगी। नंबर मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 9654896896। फिलहाल आप सभी के लिए रेडियो महारानी 89.6 पर ये गाना।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: रेडियो महारानी पर एंटरटेनमेंट का डोज अभी बाकी है मेरे

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है।

साल था जी 2015 और साल 2015 में एक बात बोली गई थी कि राजा नाहर सिंह स्टेडियम को फिर से दोबारा से चमकाया जाएगा और इस बार फिर से इंटरनेशनल मैचेस हो जाएंगे। मगर 11 साल बाद अब मैच की तैयारी फिर से कर दी गई है, मतलब काम शुरू होने ही वाला है। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड बंडा आप सभी के साथ और फरीदाबाद की गलियों से मैं आज हम लोग बात कर रहे हैं राजा नाहर सिंह स्टेडियम की, फरीदाबाद की शान, राजा नाहर सिंह स्टेडियम जहां पर इंटरनेशनल मैचेस भी हुआ करते थे, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड भी हुआ था जहां पर सुरेश रैना ने हाफ सेंचुरी भी मारी थी, मैन ऑफ द मैच भी बने थे और फिर उसके बाद उन्होंने बाइक भी चलाई थी इस ग्राउंड में MS धोनी के साथ। और ये सारी यादें हैं मेरी पुरानी और हो सकता है आप लोगों की भी बहुत सारी यादें होंगी राजा नाहर सिंह स्टेडियम को लेकर। और यहाँ पर हमारे जो विधायक हैं भड़कल विधानसभा क्षेत्र के, उन्होंने भी बोला कि इस साल दिवाली तक ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो जाएगा और मैच भी शुरू करवाया जाएगा और हो सकता है आने वाले टाइम में हम लोगों को फिर से एक इंटरनेशनल मैच देखने को मिल जाए। और मैं तो ये कहता हूँ भाई 50 ओवर्स का मैच होना चाहिए, T20 में मज़ा नहीं है। मज़ा इसलिए नहीं है क्योंकि 50 ओवर्स का जब वो मैच होगा ना तब फिर नज़ारा देखने को मिलेगा, बहुत ही बढ़िया वाले नज़ारे देखने को मिलेंगे। नज़ारे एज इन बहुत सारे मैचेस होंगे और मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होगी 50 ओवर्स का मैच। सोचो इंडिया वर्सेस कोई भी टीम ले लो, अभी तो मैं बोलूँगा ऑस्ट्रेलिया होनी चाहिए, ऑस्ट्रेलिया को भी तो पता चले फरीदाबाद क्या है, स्मार्ट सिटी फरीदाबाद। तो बस मैं इसका वेट कर रहा हूँ कि कब राजा नाहर सिंह स्टेडियम शुरू हो जाए और कब हम लोगों को मैचेस देखने को मिले। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, आप सभी के लिए खूब सारे गाने बजने वाले हैं और उन्हीं में से ये गाना आप सभी के लिए रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं, बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

अगर आप लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हो फरीदाबाद से दिल्ली, मैं बात कर रहा हूँ लोकल ट्रेन की, EMU की, तो आप लोग भी उनमें से तो नहीं हो जो लटक कर यात्रा करते हैं। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूँ द मोस्ट वांटेड वन आप सभी के साथ। देखो, EMU चलती है फरीदाबाद से दिल्ली, फरीदाबाद से पलवल और फरीदाबाद से बल्लभगढ़ भी, और वहीं पर अगर हम लोग बात करें तो मेट्रो भी चलती है, बसेस भी चलती है। मगर ऐसा क्या हो रहा है हर साल के EMU में फिर भी आप लोगों को जगह नहीं मिलेगी? यहाँ पर मेट्रो भी चलेगी, बस भी चलेगी, लोकल टैक्सी भी चलती है, मगर फिर भी आपको EMU में जगह नहीं मिलती। तो काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, जो दूसरी ट्रेन आ रही होती है ना, जो कुछ कुछ स्टेशन पर रुकती हैं, तो उनमें चढ़ जाते हैं लोग। तो देखो, प्लीज़ पहली चीज़ आपको ये सब तो नहीं करना है, और दूसरा लटक कर यात्रा नहीं करनी है, क्योंकि लापरवाही होती है ये, इससे खुद की जान तो जोखिम में डलती है और इसके साथ साथ दूसरों की भी जान जोखिम में पड़ जाती है। सपोज करो आप लोग लटक के यात्रा कर रहे हो और आप एक स्टेशन पे पहुंचे हो, किसी इंसान को चढ़ना है या फिर किसी इंसान को उतरना है और आप बिल्कुल गेट पर खड़े हैं, तो फिर क्या होगा? या तो वो इंसान आपको धक्का देगा या फिर वो इंसान आपसे बोलेगा प्लीज़ थोड़ा साइड हो जाइए, आप लोग उतरोगे, इतने में अगर ट्रेन चल पड़ी फिर आप भागोगे। तो ये सब चीज़ें होती हैं सेफ्टी हैज़र्ड्स, तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और अगर कोई भी EMU से ट्रैवल करता है तो मैं बता दूं आपको, EMU हर कुछ देर में चलती रहती है। इसके अलावा अगर बात करें ट्रैवलिंग के लिए, बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं हमारे पास, दिल्ली मेट्रो है, उसके अलावा बसेस चलती है फरीदाबाद से, प्राइवेट एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट दोनों अवेलेबल है, तो आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते रहिए, आप सभी के लिए खूब सारे गाने बज रहे हैं, उन्हीं में से ये गाना ओनली ऑन फरीदाबाद की गलियों से।

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन बिजी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5,000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे एटीएम हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरेंद्र, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

0: सर आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

फरीदाबाद में आप लोगों ने बहुत सारी जगह पे नोटिस किया होगा कि सरकार यानी कि सरकारी कर्मचारी आते हैं अपनी गाड़ी से और सफाई करके चले जाते हैं, मगर फिर भी उस जगह पे फिर से कुछ दिन बाद कूड़ा जमा हो जाता है बहुत सारा। तो देखो वो कोई डंपिंग पॉइंट नहीं है, बट हाँ लोगों ने उसे डंपिंग जोन बना दिया है। ऐसा हर सेक्टर में, हर एक एरिया में एक ना एक पॉइंट बन चुका है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम फरीदाबाद की गलियों से, और फरीदाबाद की गलियों से मैं आप सभी ने देखा होगा कि फरीदाबाद में अलग अलग डिफरेंट जोन्स में, डिफरेंट सेक्टर्स में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स बन चुके हैं जहां पर लोग कूड़ा डंप कर जाते हैं। इवन आफ्टर MCF, मतलब MCF जब आती है सफाई कर लेती है, उसके बावजूद लोग वहां पर कूड़ा डाल देते हैं। तो कितनी बार दोष दोगे आप लोग सरकार को? हम लोग कितनी बार दोष देंगे सरकार को या फिर सरकारी कर्मचारी को, ये लोग काम नहीं करते अपना? वो लोग तो अपना काम कर रहे हैं, बट क्या हम लोग अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? तो ये सवाल हम लोगों को अपने आप से पूछना पड़ेगा। और अक्सर जब लोग कूड़ा फैलाते हैं और अगर उनको कोई और इंसान आके टोकता है ना, तो वो इंसान लड़ने को तैयार हो जाता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी फरीदाबाद के वासियों से कि प्लीज़ कूड़ा मत फैलाइए, अपना फरीदाबाद और भी ज़्यादा स्वस्थ और स्वच्छ हो जाएगा। तो चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए और मुझे दीजिए इजाज़त। वापस आएगा मॉर्निंग विद फिल्मी फ्लेवर, तो उसके साथ फिल्मी फ्लेवर सुनिएगा, फिर शाम को मुलाकात होगी आप लोगों से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर।
5: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ में स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
6: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
5: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
7: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
8: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

रेडियो महारानी से मैं हूँ आरजे मोहन और इसी गाने के साथ आप सभी का स्वागत है मेरे शो में यानी कि फिल्मी फ्लेवर। मैं मोहन की ढेरों बातें चर्चाएं फिल्मी कलियारे से फिल्मी पिटारे से आप सबके लिए लेकर के आया, जहां आज बात करेंगे कुछ ऐसे टीवी स्टार्स के बारे में जो कि टीवी से निकल के बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखा और छा गए, और कुछ बॉलीवुड के ऐसे गुमनाम चेहरे जिन्होंने ओटीटी पर मचाया धमाल और अपनी फैन फॉलोइंग में करी बढ़ोतरी। और वही बात करेंगे टीवी के कुछ ऐसे विलन्स के बारे में जिनकी चर्चाएं भैया इतनी खूब होती हैं कि उनके एक एक डायलॉग को फैंस बहुत ज्यादा पसंद किया करते हैं। और वही 90 के दशक के कुछ ऐसे कॉमेडी शो जिनको आज भी देखना हर कोई पसंद करता है। तो बॉलीवुड के गलियारे से बॉलीवुड के पिटारे जैसी और भी ढेरों चर्चाएं आप सबके लिए लेकर के आऊंगा कुछ अपकमिंग स्टार्स के बारे में, तो कुछ आने वाली बेहतरीन कहानियों के बारे में, कुछ नई जोड़ियां दिखेंगे सिल्वर स्क्रीन पर, तो इसी के साथ साथ कुछ फ्रेंचाइज की अगली किस्त बहुत जल्द सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। लेकिन ये सारी चर्चाएं करने से पहले यानी कि बॉलीवुड का पिटारा खोलने से पहले सुना देता हूं कुछ धमाकेदार से गाने ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM को छटके। और ज्यादा ये खूबसूरत सा गाना आप सभी के

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा, पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए U150,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। OTP मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

गाना फ्रॉम द मूवी रंग दे बसंती, और इसी के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। दोस्तों यहाँ हम बात करते हैं, देखिए वक्त के साथ साथ कॉमेडी का अंदाज भी बदल गया। अब डार्क कॉमेडी करना एक कूल बात मानी जाती है, लेकिन सच्चाई है कि आज भी लोग टीन कॉमेडी देखना बहुत पसंद करते हैं। बिल्कुल वैसे ही कॉमेडी लोगों को भाती है जैसी 90 के दशक के कॉमेडी सीरियल्स छा जाया करते थे, और आज भी उन सीरियल्स को देखना लोग पसंद करते हैं। तो इसी कड़ी में अगर बात करूँ, देखिए कॉमेडी स्टैंड अप शो के नाम पर आजकल बहुत सारे

कहानी दिखाई गई जहाँ मीनाक्षी, राधिका, स्वीटी, काजल और छोटी नाम की पांच बेटियां हैं और हर बेटी का अंदाज हरकतें ऐसी कि दर्शक लोटपोट हो जाते हैं। इस सीरियल में एक समय में विद्या बालन भी नजर आई थी और इस किरदार को, इस सीरियल को लोगों ने बहुत पसंद किया। और इसके बाद बात करते हैं एक और बहुत बढ़िया कहानी के बारे में, जबान संभाल के। ये कॉमेडी शो एक ब्रिटिश शो माइंड योर लैंग्वेज का हिंदी वर्जन बनाया गया। इसमें पंकज कपूर ने एक लैंग्वेज टीचर का किरदार निभाया। इस सीरियल में हिंदी भाषा सीखने के कई लोग आते हैं और इनकी बातचीत के जरिए ही हंसी का माहौल बन जाता है। देखा ही होगा, अगर नहीं देखा, देखिए। अगर आज के किड्स की बात करें तो बिल्कुल ये कॉमेडी शो देखिए, आप लोग हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे। फिर बात करता हूँ श्रीमान श्रीमती। आज कपिल शर्मा शो पर अर्चना पूरन सिंह जज की कुर्सी पर बैठकर खूब हंसती हैं, लेकिन 90 के दशक में अर्चना पूरन सिंह ने श्रीमान श्रीमती सीरियल के जरिए दर्शकों को खूब हंसाया भी है। इस सीरियल में दो अलग अलग शादीशुदा जोड़ों की कहानी है। ये आपस में पड़ोसी हैं और पड़ोसियों की नोकझोंक किस फनी तरीके से बाहर आती है, ये भैया श्रीमान श्रीमती सीरियल को देखने वाले अच्छे से जानते हैं। अब जाते थे एक नाम और लेना चाहूंगा, फ्लॉप शो। टीम कॉमेडी करने के लिए जसपाल भट्टी जाने जाते थे और जसपाल भट्टी बेशक आज हमारे बीच नहीं, लेकिन उनकी कॉमेडी, उनका ये अंदाज हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। उनका एक शो फ्लॉप शो आता था और ये स्टायर कॉमिक शो था। सिस्टम, पॉलिटिक्स, समाज, सभी पर एक सीरियल कॉमेडी के जरिए कटाक्ष करता था और इस शो में जसपाल भट्टी के साथ उनकी पत्नी सविता भी नजर आती। तो 90 के दशक के कुछ ऐसे सीरियल जिनको लोग देखना पसंद किया करते थे और अगर आज भी इनको रिपीट भी देखा जाए तो भैया अपनी हंसी को आप रोक नहीं पाएंगे। बाकी ऐसी और भी ढेरों बातें चर्चाएं तो लेकर के आते रहूंगा। उससे पहले एक और खूबसूरत सा गाना आप सभी को।

बार फिर से लौट आया हूँ फिल्मी टॉनिक आरजे मॉनिक लेकर के शो फिल्मी फ्लेवर। दोस्तों यहाँ बात करते हैं टीवी सीरियल में ज्यादातर महिला किरदारों के इर्द गिर्द कहानी घूमती, साथ ही टीवी सीरियल्स में विलन्स के रोल को ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलती नजर आई है कई किरदारों के जरिए। यहाँ अगर बात करूँ ऐसे खलनायकी का किरदार निभाने वाले कुछ टीवी विलन्स के बारे में, सबसे पहले बात करता हूँ सुरेंद्र पाल सिंह के बारे में। सीरियल शक्तिमान में मुकेश खन्ना ने लीड रोल निभाया था जिसे काफी ज्यादा पसंद भी किया गया, और इस सीरियल में शक्तिमान का सामना तमराज किल्विश नाम के विलन से होता है, और किल्विश का फेमस डायलॉग था अंधेरा कायम रहे, वह दुनिया में बुराई और अंधेरा फैलाना चाहता था। इस किरदार को एक्टर सुरेंद्र पाल सिंह जी ने निभाया और इस किरदार को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद भी किया। फिर बात करते हैं करणवीर बोहरा के बारे में। दिल से दी दुआ सौभाग्यवती भवा में विराज डोबरियाल का किरदार था, और करणवीर बोहरा के इस किरदार को इतना ज्यादा प्यार मिला था ना कि भैया बात की जाए अपनी पत्नी को बहुत ही ज्यादा परेशान करता था ये किरदार, और एक साइको किस्म का कैरेक्टर, लेकिन इस साइको किस्म के कैरेक्टर के विलन वाले अंदाज को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। बेशक नेगेटिव रोल था लेकिन नेगेटिव रोल को लोगों ने कितने बढ़िया तरीके से सराहा आप जानते ही। अब भैया दिल थामे जी एक ऐसा किरदार जिसके हर डायलॉग में एक अलग ही अंदाज, कई बार किरदार बेशक किसी को डांट रहा हो लेकिन उनका डायलॉग इतना धमाकेदार कि कई बार तो हंसी भी छूट जाया करती थी। अब बात करता हूँ साल 2009 में सीरियल प्रतिज्ञा में एक बहुत ही बढ़िया किरदार निभाने वाले अनुपम श्याम जी के बारे में जिन्होंने ठाकुर सज्जन सिंह का किरदार निभाया। अनुपम श्याम की लंबी दाढ़ी, बड़ी बड़ी आंखें और बुलंद आवाज ने इस किरदार में एक अलग ही जान डाल दी थी, और इस किरदार को बहुत ज्यादा फेम मिला। कई लोगों का तो ये भी कहना कि प्रतिज्ञा की कहानी कितनी अच्छी है नहीं जानते, लेकिन प्रतिज्ञा सीरियल हम लोग इसलिए देखा करते हैं कि ठाकुर सज्जन सिंह का किरदार और उनका वह रुतबेदार जो डायलॉग जो बोलते हैं बड़ा पसंद आ। फिर बात करता हूँ सुदेश बेरी के बारे में। टीवी पर अलग अलग तरह के इन्होंने किरदार निभाए, लेकिन साल 2009 में सीरियल अगले जन्म है बिटिया ही कीजो में लोहा सिंह के किरदार में उन्होंने अलग ही पहचान ली। लोहा सिंह अपने परिवार की मान मर्यादा को बचाने के लिए किसी को भी परेशान करने से पीछे नहीं रहता था, और बस इसी किरदार का और इसी अंदाज को लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया। बाकी ऐसी और भी ढेरों बातें चर्चा लाता रहूंगा, उससे पहले एक और खूबसूरत सा गाना आप सभी के लिए।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: इंटरनेट मीडिया अकाउंट या मोबाइल फोन पे पैसे की मांग पर भरोसा ना करें। किसी भी मैसेंजर ऐप पर अनजान वीडियो कॉल से सावधान रहें।
0: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा

किसी कुदरत गाने के साथ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे शो में, यानी कि फिल्मी फ्लेवर में फिल्मी टॉनिक। यहाँ आप दोस्तों बात करते हैं फिल्मों में। देखिए, कई किरदार ऐसे होते हैं जो दर्शकों को ताम्र याद रहते हैं। कई बार तो कलाकार का नाम दर्शक भूल जाते हैं, लेकिन किरदार का नाम कभी नहीं भूलते। और वेब सीरीज की दुनिया में भी कुछ ऐसे ही एक्टर्स हैं जिनके निभाए किरदार ही दर्शकों को याद रहते हैं। बेशक असल नाम भूल गए हो, लेकिन उनके किरदारों का नाम आज भी ज़बान पर रहता है। इसी कड़ी में सबसे पहले बात करना चाहूंगा पंचायत वेब सीरीज के प्रहलाद चाचा के बारे में। देखिए, पंचायत के कई सीजन आ चुके हैं। इस सीरीज में फैजल मलिक ने प्रहलाद चाचा का रोल निभाया। ये किरदार दर्शकों के बीच इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि इनके डायलॉग्स पर मीम्स भी बनना शुरू हो गए। प्रहलाद चाचा रिश्तों की, परिवार की और दोस्ती अहमियत दर्शकों को बताते नजर आते। इस सीरीज में विनोद यानी कि अशोक पाठक और बंदराकस दुर्गेश कुमार के किरदार को भी वैसे लोगों ने बहुत पसंद किया था। आगे बात करते हैं गुल्लक की बिट्टू की मम्मी के बारे में। जी हाँ, वेब सीरीज गुल्लक में सुनीता राजवार ने बिट्टू की मम्मी का किरदार निभाया था और बिट्टू की मम्मी इस वेब सीरीज में मुख्य भूमिका में नजर आई। वह आए दिन इस परिवार के घर में चली आती और कुछ ना कुछ खुराफात करती, और इनकी इसी खुराफाती कहानियों को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। बात करता हूँ इसी एक और बेहतरीन वेब सीरीज कोटा फैक्ट्री के बारे में। जितेंद्र कुमार कई वेब सीरीज में लीड रोल कर चुके हैं, लेकिन उनको सबसे ज्यादा प्यार मिला कोटा फैक्ट्री के जीतू भैया के रोल में, जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया। इसी नाम से उन्हें आज जाना भी जा रहा है। वेब सीरीज कोटा फैक्ट्री में जितेंद्र कुमार ने एक कोचिंग सेंटर के टीचर का रोल निभाया, जो बच्चों को खूब सपोर्ट करते नजर आते हैं। अब बात करता हूँ भैया एक और बहुत बेहतरीन वेब सीरीज के बारे में, जिस वेब सीरीज की दीवान लोगों के सर पर चढ़कर बोलती है। वेब सीरीज मिर्जापुर में कालीन भैया की पत्नी दीना का रोल एक्ट्रेस रसिका दुग्गल ने निभाया, और इस सीरीज में ये किरदार काफी दमदार था। इस किरदार रश्मिका दुग्गल के एक्टिंग करियर का बेस्ट और पॉपुलर करेक्टर रहा। तो दोस्तों, ऐसी ही और भी किस्से कहानियां बॉलीवुड के पिटारे से कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म से आप सबके लेकर के आता रहूंगा, लेकिन उससे पहले सुना देता हूँ एक और खूबसूरत सा गाना ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: साइबर सिपाही यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: क्या आपको पता है कि फेसबुक पे आपके रिलेटिव से ज्यादा खतरनाक सिर्फ एक ही चीज है और वो है हैकर्स। तो उनसे प्रोटेक्शन चाहिए तो कुछ मेजर्स तो फॉलो करने पड़ेंगे ना। तो सबसे पहले बात करते हैं पासवर्ड की। लेट मी गेस, आपका पासवर्ड क्या ही होगा? पासवर्ड 123 या फिर 12345? अरे भाई, तुम्हारा पासवर्ड इतना वीक है कि मेरी नानी भी गेस कर ले। तो सबसे पहले अपना पासवर्ड ऐसा बनाओ जैसे अपने क्रश को प्रपोजल लेटर लिख रहे हो, मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और अनप्रिडिक्टेबल। याद रखो दोस्तों, सेफ रहो, स्मार्ट बनो और फेसबुक पे बॉस रहो।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: चाय सिर्फ जुबान ही नहीं बल्कि दिलों को छू जाती है। होती तो सिर्फ एक कप है पर बातें दिल खोल कर हो जाती हैं।
5: पुराने दोस्त और भूले बिसरे किस्से, हंस टी स्टॉल की चाय जब भी पियो रिश्तों में नए जायके घोल जाती है।
6: यारों का 48 साल पुराना चाय का अड्डा, सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक, हंस टी स्टॉल, गोपी कॉलोनी चौक, ऋषि मार्केट, नियर लक्ष्मी नारायण मंदिर।

सुनंदा शर्मा की आवाज में बहुत ही खूबसूरत गाना और शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर। मैं मॉनिक। देखिए दोस्तों, साउथ से लेकर बॉलीवुड तक सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडियन पीरियड वॉर ड्रामा फिल्मों की अगर मैं यहाँ बात करूँ, जो कि लोगों के दिलों पर तो छाई छाई, साथ ही साथ सिल्वर स्क्रीन पर भी छाई रही ये कहानियां काफी लंबे वक्त तक। यहाँ सबसे पहले बात करता हूँ पद्मावत। संजय लीला भंसाली की ये फिल्म पद्मावत में रणवीर सिंह, शाहिद कपूर और दीपिका पादुकोण ने मुख्य भूमिका निभाई थी और ये फिल्म महाराजा रतन सिंह और रानी पद्मावत की कहानी पर बनाई गई है और इस फिल्म के किरदारों को अच्छा खासा प्यार मिलता नजर आया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 300 करोड़ से ज्यादा ही कमाई करी। इसके बाद बात करते हैं एक और बहुत बेहतरीन कहानी, तानाजी द अनसंग वॉरियर। अजय देवगन की ये बहुत बढ़िया फिल्म जिसको 2020 में रिलीज किया गया। ओम राउत ने इस फिल्म का डायरेक्शन किया। फिल्म में तानाजी मालू सरे के संघर्ष और वीरता को दिखाया गया। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लगभग 280 करोड़ की कमाई करके लोगों के दिलों पर छा गई थी। फिर बात करता हूँ बाजीराव मस्तानी। सुशीला भंसाली की एक और बहुत बढ़िया फिल्म बाजीराव मस्तानी, जहाँ रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा मुख्य भूमिका में नजर आए। 2015 में रिलीज की गई ये फिल्म छत्रपति बाजीराव और मस्तानी की कहानी को दिखाया गया, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 185 करोड़ की शानदार कमाई करी थी। ऐसे ही बात करता हूँ पोनियन सेल्वन 1 और 2 के बारे में। पहली कहानी को 2022 में रिलीज किया गया, जहां पे मणिरत्नम ने इस कहानी को डायरेक्ट किया था। विक्रम और ऐश्वर्या राय जैसे दिग्गज स्टार्स नजर आए और दक्षिण भारत के ऐतिहासिक साम्राज्य चोल वंश पर बनी हुई कहानी ने 266 करोड़ की कमाई करी। और जब इसका अगला पार्ट रिलीज किया गया 2023 में, तो इस कहानी ने भी 200 करोड़ का आंकड़ा तो छू ही लिया। तो ऐसी इंडियन पीरियड ड्रामा फिल्म्स को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया है और आगे भी फैंस की उम्मीद है कि ऐसी कहानी को और सिल्वर स्क्रीन पर लाया जाए। बाकी ऐसी बातें चर्चा लाता रहूंगा, उससे पहले

0: ट्विस्ट से लेकर नए सॉन्ग की लिस्ट तक सुनते रहिए फिल्मी फ्लेवर रेडियो महारानी 89.6 एफएम कुछ हटके पर।
1: ए जय माता जी ने हम कहीं कहूशू के वा फरे वादल फरे वायरो फरे पण एक बार बोलिया पछी मारा मित्रों आ मित्रों कदी ना फरे के हालो ने

है मुश्किल। फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे शो में यानी कि फिल्मी क्लिप। दोस्तों अब यहाँ बात करते हैं बहुत ही ऐसी कहानियां जो कि आज के दौर में हाई बजट फिल्म मानी जाती हैं। कोई 500 करोड़ में बनी तो कोई 1000 करोड़ में। लेकिन दोस्तों देखिए बात करूं 1960 के दौर की, एक ऐसे डायरेक्टर के आसिफ साहब जिस दौर में लगभग कहानियों की बजट की बात की जाए, एक नॉर्मल बजट की बात की जाए तो 20 से 30 लाख और अपर हायर बजट फिल्म रहती थी तो 50 से 60 लाख। लेकिन 1960 के दौर में कहानी की हम बात करें, मुगले आजम जिस कहानी को बनाने में 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए थे के आसिफ साहब ने, और उस दौर के सबसे ज्यादा महंगी फिल्मों में से एक फिल्म रही थी 1.5 करोड़ रुपए, जबकि कहानियां

तो कोई YouTube चैनल था और ना ही सोशल मीडिया। तो के आसिफ साहब की हिम्मत की दाद आज भी लोग दिया करते हैं कि भैया उस दौर में इतना ज्यादा पैसा खर्च करने की हिम्मत उन्होंने जुटाई। और जब फिल्म को रिलीज किया गया तो दिलीप कुमार और मधुबाला के किरदारों को लोगों ने बहुत पसंद किया, मुगले आजम की कहानी को पसंद किया और स्पेशली उसके सेट को जिस हिसाब से बनाया गया था औसम। जैसे बात की जाए आज के दौर में आमिर को मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से जाना जाता है। 1960 के दौर में के आसिफ साहब को मिस्टर परफेक्शनिस्ट के तौर पर जाना जाता था। कई सीन्स तो ऐसे थे जब एक एक सीन को परफेक्ट तरीके से शूट करवाने के साथ साथ आठ आठ दिन गुजार दिया करते थे के आसिफ साहब, जब तक उन्होंने जिस हिसाब से सोचा है वैसा सीन नहीं शूट हो जाया करता था। तो के आसिफ साहब की बनी एक बहुत बेहतरीन फिल्म मुगले आजम को लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया और आज भी लोग इस कहानी को जब देखा करते हैं तो सल्यूट किया करते हैं। बॉस इतनी ज्यादा बेहतरीन कहानी आज के दौर में इतनी आसानी से बनाना पॉसिबल नहीं। बाकी ऐसी और ढेरों बातें चर्चा आप सभी लेकर के आता रहूंगा। उससे पहले एक और खूबसूरत आप सभी

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है?
0: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इरशाद,
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी जिलायक।
1: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स ओटीपी सब दे दूंगा।
2: अच्छा, बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे

गाना है फ्रॉम द मूवी नमस्ते लंदन और शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर। दोस्तों अब यहाँ बात करते हैं छोटे पर्दे से अपने करियर की शुरुआत करने वाले बॉलीवुड में सक्सेसफुल करियर बनाने वाले कुछ ऐसे स्टार्स के बारे में। सबसे पहले बात करता हूँ आयुष्मान खुराना। 2004 में रोडीज के विनर रहे और उसके बाद बॉलीवुड में डेब्यू किया। विक्की डोनर ने कहानी दी और इस कहानी को लोगों ने बहुत प्यार दिया। फिर नोटेबल कहानियों की बात की जाए, अंधाधुन, आर्टिकल 15 और ड्रीम गर्ल जैसी कहानियों में किरदार निभाकर के अच्छा खासा प्यार बटोरा। फिर बात करता हूँ मृणाल ठाकुर के बारे में। 2014 से 16 के बीच में टीवी पर कुमकुम भाग्य में किरदार निभाया और उसके बाद जब बॉलीवुड में डेब्यू किया 2018 की बात थी, लव सोनिया से, सुपर 30, जर्सी और सीतारमम जैसी कहानियों में प्यार बटोरती नजर आई। फिर बात करता हूँ प्राची देसाई। टीवी शो जिसको 2006-08 में रिलीज किया गया कसम से जैसे सीरियल्स के साथ प्यार बटोरा और उसके बाद जब बॉलीवुड में मौका मिला रॉक ऑन, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, बोल बच्चन जैसी कहानियों में प्यार बटोरती नजर आई। पहले बात करते हैं एक और जाना माना चेहरा यामी गौतम। चांद के पार चलो ये प्यार ना होगा कम जैसे कहानियों के साथ टीवी शोज में बहुत अच्छा खासा किरदार निभाया। फिर जब बॉलीवुड में उनका डेब्यू हुआ विकेट ओवर कहानी से और उसके बाद उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, OMG 2 जैसी कहानियों में प्यार बटोरती नजर आई। ऐसी कुछ और चेहरों की मैं बात करूं, सुशांत सिंह राजपूत बेशक आज हमारे बीच नहीं लेकिन उनके किरदार को लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया। पवित्र रिश्ता से उन्होंने शुरुआत करी थी, फिर बॉलीवुड में डेब्यू किया काय पहुंचे और उसके बाद MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, छिछोरे और केदारनाथ जैसी कहानियों में उनके किरदार को उनकी एक्टिंग को बहुत ज्यादा सराहा गया। करण सिंह ग्रोवर दिल में गए 2007 से 2010 के बीच ये शो टीवी पर प्रीमियर हुआ और बॉलीवुड में जब डेब्यू का मौका मिला तो 2015 की बात थी, एलोन से डेब्यू किया और उसके बाद हीट स्टोरी 3 के किरदार को इनको बहुत ज्यादा प्यार मिला, बहुत फेम मिला इस किरदार का। वैसे कुछ ऐसे और पुराने चेहरों की अगर मैं और जाऊं तो एक और बहुत बढ़िया स्टार मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, कुछ विद्या बालन जिन्होंने भी टीवी से ही शुरुआत करी थी और उसके बाद बॉलीवुड में अच्छा खासा प्यार कमाया। SRK की बात करते हैं हम, इन्होंने भी टीवी के एक बहुत बढ़िया सीरियल फौजी और सर्कस से शुरुआत करी और फिर बॉलीवुड डेब्यू किया दीवाना से। तो देखिए बहुत ऐसे स्टार जिन्होंने अच्छी खासी मेहनत करी और आगे बढ़े और आज बॉलीवुड में अच्छा खासा नाम कमाते नजर आए। बाकी ऐसी अपडेट और बातें चर्चाएं लेकर के आता रहूंगा, उससे पहले एक और खूबसूरत आप सभी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

हम बात करते हैं बॉलीवुड के कुछ ऐसे एक्टर्स के बारे में जो कि बिग स्क्रीन से यानी कि सिल्वर स्क्रीन से बिल्कुल ही गायब हो गए और OTT प्लेटफॉर्म ने उनको एक जबरदस्त कमबैक दिया, एक नई पहचान बनाई। यहाँ कुछ ऐसे ही स्टार्स के बारे में मैं बात करने वाला। सबसे पहले बात करूंगा बॉबी देओल। 90s में इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी सोल्जर, गुप्त और बादल जैसी कहानियों के साथ, लेकिन काफी टाइम से सिल्वर स्क्रीन पर गायब रहे और कमबैक मिला आश्रम वेब सीरीज से। जिस आश्रम वेब सीरीज में इनको बहुत ज्यादा प्यार मिला और उसके बाद बॉलीवुड में फिर से दिखाई दिए एनिमल की कहानी के साथ। फिर बात करता हूँ मनोज बाजपेयी। अपने करियर की शुरुआत सत्य और शूल जैसी कहानियों के साथ और कुछ वक्त तक सिल्वर स्क्रीन पर नहीं नजर आए, लेकिन जैसी द फैमिली मैन जैसी कहानी इनके नाम इनके हाथ लगी तो इस द फैमिली मैन ने इनको एक अलग ही पहचान दिलाई और OTT ने अच्छा खासा रोल निभाया इनके कमबैक के लिए। अब बात करते रहना है तेरे दिल में। वैसे इस कहानी का नाम लेते सर आप स्टार का नाम तो जान ही लोगे, आर मारू। बॉलीवुड में और साउथ इंडस्ट्री में दोनों में हिट फिल्म्स इनकी रही, लेकिन जैसे ही OTT पर लंबे अरसे बाद इनका नाम अनाउंस हुआ दी कपल से तो फैंस बहुत ज्यादा खुशी हुई। चली लंबे अरसे बाद ही सही, लेकिन आर माधवन फिर से कमबैक करते नजर आए। ऐसी अब बात करते हैं सुष्मिता सेन के बारे में। 90 से 2000 में टॉप एक्ट्रेस में रही जैसे बहुत बड़ी बढ़िया कहानी के साथ, बीवी नंबर वन, मैं हूं ना, और फिर बॉलीवुड से बिल्कुल ही दूरी बना ली। लेकिन जब कमबैक किया तो OTT प्लेटफॉर्म पे आर्या जैसी कहानी के साथ कमबैक करके इन्होंने फिर से फैंस के दिलों में एक अलग ही जगह बना ली। इस लिस्ट में से स्टार्स तो बहुत सारे शामिल हैं, मैं यही बात करूं तो विवेक ओब्रॉय, बहुत सारी कहानियां इन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में किरदार निभाए और अच्छा खासा प्यार बटोरा। लेकिन विवेक ओब्रॉय भी यार इंडस्ट्री से काफी दूर होते नजर आए, ना ही कोई किरदार निभाते नजर आए, ना ही कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट की कोई इन्होंने जानकारी दी। लेकिन जैसे ही एकदम से फैंस को पता चला सोशल मीडिया कि भाई OTT पर कमबैक कर रहे हैं, वो भी इनसाइड एज से, तो फैंस का इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। और जैसे ही कहानी को रिलीज किया गया तो फैंस ने खूब इनके किरदार की वाहवाही की। और अब एक किरदार ऐसा, अर्शद वारसी। बॉलीवुड करियर मुन्ना भाई MBBS धमाल के बाद थोड़ा सिल्वर स्क्रीन से दूर होते नजर आए, लेकिन भाई OTT प्लेटफॉर्म ने जिसे हर किसी को मौका दिया, अर्शद वारसी को भी एक मौका दिया असुर। और फैंस का ये कहना है भाई अर्शद वारसी का अपनी लाइफ का सबसे बढ़िया किरदार रहा असुर। असुर में इनका जो किरदार था इतना ज्यादा माइंड ब्लोइंग, अपने करियर से बिल्कुल हट करके किरदार निभाया जहां इस कहानी को लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया। वैसे देखिए ये बात तो सच है कि OTT प्लेटफॉर्म ने ऐसे बहुत से स्टार्स को मौका दिया और फिर से उनके करियर का एक टर्निंग पॉइंट बनाया अपनी इन कहानियों के साथ। बाकी ऐसी चर्चाएं लाता रहूंगा, उससे पहले एक और खूब चलता है।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल ब्लॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
1: कुछ हटके।
3: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
4: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
3: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
4: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
3: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
4: आवारा हूँ, आवारा।
3: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना न भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

एक बहुत ही खूबसूरत गाना नगाड़ा संग ढोल बाजे, इस गाने को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था। और देखिए दोस्तों, अगर यहाँ गाने की बात हुई है तो क्यों ना बॉलीवुड के कुछ ऐसे गानों की बात करें जहाँ कुछ फिल्मों को इतना ज्यादा प्रमोशन या इतना ज्यादा प्यार नहीं मिल पाया, लेकिन उनके गानों ने अच्छा खासा प्यार बटोरा। यहाँ अगर मैं सबसे पहले बात करूँ एक बहुत ही बढ़िया कहानी चाइना गेट के बारे में, 1998 में इस कहानी को रिलीज किया गया और इस कहानी का गाना छम्मा छम्मा जो कि इस मूवी से ज्यादा प्यार बटोरता नजर आया। फिल्म बेशक उतनी ज्यादा अच्छी साबित नहीं हुई, लेकिन उर्मिला मातोंडकर का ये डांस सॉन्ग लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। फिर बात करते हैं यस बॉस, 1997 में इस कहानी को रिलीज किया गया था। फिल्म SRK की थी जहाँ पे हमें जूही भी नजर आई, और इस गाने की मैं बात कर रहा हूँ, उस गाने का नाम है एक दिन आप। ये एक गाना चार्ट बस्टर बन गया था, इस गाने को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। कहानी को तो प्यार मिला ही, लेकिन ये गाना शायद कहानी से भी ज्यादा फेमस हुआ। फिर बात करते हैं रेस, जिसको 2008 में रिलीज किया गया। पहली नजर में फिल्म हिट थी, लेकिन इस गाने का क्रेज आज भी उतना ही है जितना उस दौर में था। आते असलम का मैजिकल वॉइस और रोमांटिक वाइब्स अच्छी खासी मैच हुई लोगों के फैन फॉलोइंग के साथ। फिर बात करता हूँ तुम ही हो फ्रॉम द मूवी Aashiqui 2। फिल्म तो चल गई थी, लेकिन गाना इतना बड़ा हिट हुआ कि उसने अरिजीत सिंह को सुपरस्टार बना दिया। हर टचिंग लिरिक्स और अरिजीत सिंह की सोलफुल आवाज, दोनों का मैच अच्छा खासा प्यार बटोरते नजर आया। फिर बात करते हैं केसरिया फ्रॉम द मूवी ब्रह्मास्त्र। फिल्म ने मिक्स रिस्पांस दिया, ना ही ज्यादा अच्छा ना ही ज्यादा बुरा, लेकिन केसरिया हर जगह बज रहा था। सिंपल लिरिक्स और परफेक्ट मेलोडी के साथ इस गाने ने लोगों के दिलों में जगह बना ली। अब बात करते हैं झूमे जो पठान फ्रॉम द मूवी पठान, जिसको 2023 में रिलीज किया गया। फिल्म ब्लॉकबस्टर थी, लेकिन ये गाना सबकी फिटनेस प्लेलिस्ट और शादियों का मस्ट प्ले सॉन्ग बन गया। SRK का स्वैग और विशाल शेखर का म्यूजिक, इन तीनों की तिकड़ी ने अच्छा खासा धमाल मचाया। बाकी ऐसी बॉलीवुड से और भी ढेरों बातें चर्चाएं लाता रहूंगा, उससे पहले एक और खूबसूरत सा गाना आप सभी के लिए।

गाना है फ्रॉम द मूवी ओके जानू और शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर मैं मौत। दोस्तों हम बात करते हैं 90s के दौर की और आज के दौर की कुछ ऐसी कहानियों के बारे में, जिन कहानियों के हीरोज की एंट्री ऐसी रही जो कि आइकॉनिक साबित हुई। तो ऐसे स्टार्स की बात करो 1995 में रिलीज हुई फिल्म करण अर्जुन, जहाँ पे SRK की एंट्री को लोगों ने बहुत पसंद किया और इस फिल्म के एक बहुत ही फेमस डायलॉग मेरे करण अर्जुन आएंगे। डायलॉग फेमस होने के बाद जब SRK जिंदा होकर एंट्री लेते हैं तो पूरा थिएटर सीटी मार बन जाता है। हर किसी ने इस सीन को बहुत ज्यादा पसंद किया। फिर बात करते हैं अजय देवगन की फूल और कांटे। दो बाइक्स पे खड़े होकर एंट्री करने वाले पहले ऐसे स्टार बॉलीवुड में किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा धमाका होगा। ये स्टंट आज भी अजय की पहचान माना जाता है। अब बात करते हैं खिलाड़ी कुमार यानी कि अक्षय कुमार की। अक्षय की एंट्री एक थ्रिलिंग एक्शन सीक्वेंस के साथ होती है जो उनका खिलाड़ी कुमार टाइटल ही बन जाता है। उनके एक्शन पैक्ड करियर का सॉलिड फाउंडेशन रही खिलाड़ी जो कि 1992 में रिलीज की गई। अब बात करते हैं 2000 के दौर की जब ऋतिक रोशन की एंट्री कहो ना प्यार है में होती है। स्लो मोशन में बीच के ऊपर शर्टलेस डांस, उसके बाद एक धमाकेदार फाइट सीन, इतना ज्यादा धमाल मचाया था इस कहानी ने और ऋतिक के किरदार के साथ डांस ने भी। इश्क विश्क शाहिद कपूर की एक बहुत बेहतरीन कहानी रही। कॉलेज बॉय की चॉकलेटी एंट्री डांस मूव्स और क्यूट स्माइल के साथ जेंजी और 90s के किड्स का नए एज क्रश बन जाना शाहिद कपूर के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। फिर बात करते हैं जॉन अब्राहम की धूम। 2004 में इस कहानी को रिलीज किया गया और एक राइडर हाई स्पीड बाइक चेज में एंट्री लेते हैं जॉन अब्राहम और जब मास्क हटता है तो बूम, जॉन अब्राहम की एंट्री सबने बहुत ज्यादा पसंद किया और बॉलीवुड का सबसे कूल विलन बन गए थे जॉन अब्राहम। अब जाते आते यहाँ पे मैं एक नाम और लेना चाहूंगा, रणवीर सिंह। गोलियों की रास लीला 2013 में इस कहानी को रिलीज किया गया और धमाकेदार गन फायरिंग एंट्री और एनर्जी से भरी पर्सनालिटी, रणवीर का फुल ऑन पावर हाउस परफॉर्मर होना प्रूफ हो गया था इस कहानी में और इस कहानी की एंट्री के साथ। चलिए दोस्तों वैसे एक मैं नाम और ले ही लेता हूँ, विकी कौशल का उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक हाउस द जोश। ये डायलॉग बॉस इतना ज्यादा वायरल हुआ कि आज भी इस डायलॉग को लोग अपनी रील्स तक में यूज किया करते हैं। वैसे डायलॉग जब हाउस द जोश के साथ कमेंडो स्टाइल एंट्री हुई विकी कौशल की तो सुपरस्टार ट्रांसफॉर्मेशन रही उनके करियर की। बाकी ऐसी और भी ढेरों बातें चर्चाएं तो लेकर के आता ही रहूंगा, उससे पहले एक और खूब चर्चा करूंगा।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

एक बार फिर से लौट आया हूँ मैं लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। मैं मोनिका। और दोस्तों अगर देखिए बॉलीवुड की बात की जाए तो बॉलीवुड सिर्फ मूवीज एक्टर्स और डायलॉग्स के लिए नहीं जाना जाता बल्कि यहाँ मूवी के टाइटल्स भी कई बार इतने ज्यादा हटके होते हैं जिसे सुनकर लगता है कि भाई ये क्या था। तो चलिए यहाँ मैं आपको बताता हूँ बॉलीवुड के कुछ ऐसे ही टाइटल्स के बारे में जहाँ सुनकर के आप हंसी से लोटपोट हो जाने वाले हैं और स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा कि भाई कुछ ज्यादा ही हटके नहीं होगा। यहाँ सबसे पहले बात करूँ 1971 में रिलीज की गई कहानी जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली। एक रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म थी पर टाइटल इतना अजीब था तो लोगों को लगा कि ये कोई साइंस फिक्शन मूवी तो नहीं होने वाली। आगे बात करते हैं बॉलीवुड के ऐसे एक और टाइटल के बारे में जो कि 1988 में कहानी को रिलीज किया गया जैसे कहानी का नाम था पाप को जलाकर राख कर दूंगा। एक प्रॉपर मसाला फिल्म जिसमें रिवेंज ड्रामा और एक्शन था और टाइटल इतना ज्यादा ड्रामेटिक था लग रहा था भाई यहाँ पे एक्शन के अलावा और कुछ होना ही नहीं वाला। और अब यहाँ बात करते हैं ऐसे एक और टाइटल के बारे में जहाँ लग रहा था कि भैया मूवी का कोई कनेक्शन ही नहीं है इस टाइटल से। टाइटल का नाम है मट्टू की बिजली का मंडोला जिसको 2013 में रिलीज किया गया। बॉलीवुड में कभी कभी मूवी का टाइटल ऐसा होता ना कि भैया हर कोई हैरान रह जाते हैं भाई है क्या मूवी में बताना क्या चाहते हो। और मूवी रिलीजिंग के दौरान लोगों को कहानी अच्छी भी लगती है लेकिन आखिर में हर कोई यही सोचता है कि भैया टाइटल का क्या कनेक्शन था इस कहानी से। और यही जाते जाते मैं एक कहानी का नाम और लेना चाहूंगा लाली की शादी में लड्डू दीवाना। 2017 में इस कहानी को रिलीज किया गया था। एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी जिसमें विवान शाह और अक्षा हसन नजर आए थे। और टाइटल की अगर बात की जाए तो भाई इतना था डिफरेंट टाइटल है इतना कुछ हटके टाइटल है जैसे कि रेडियो महारानी को हटके है और लोगों को लग रहा है भैया टाइटल जैसा है कि कहानी भी इतनी ज्यादा घूमी फिरी तो नहीं होने वाली क्योंकि टाइटल से किसी को समझ नहीं आया कि भैया कहानी में एग्जैक्टली होने ही वाला है। लेकिन जब कहानी को रिलीज किया गया लगा भैया कहानी तो बिल्कुल सीरियसली ट्रैक पर चल रही थी जो टाइटल था वो कुछ ज्यादा ही घुमा दिया गया। बाकी देखिए चलिए कभी डायलॉग्स ट्रेंडिंग में रहते हैं तो कभी गाने ट्रेंडिंग में रहते हैं यही कुछ ऐसे टाइटल्स हैं मूवी के जहां मूवी की कहानी से ज्यादा लोगों ने टाइटल के ऊपर ज्यादा फोकस किया था। बाकी ऐसी और भी ढेरों बातें चर्चा लेकर के आता रहूंगा। सुबह सुना देता हूँ एक और बढ़िया सा गाना।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना के हैं तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: यारो मुझे मुआफ करो, मैं नशे में हूँ। बड़ी हसीन है जुल्फों की शाम, पी लीजिए हमारे हाथ से दो चार जाम, पी लीजिए। पिलाए जब कोई माशूक अपने हाथों से शराब।

हनी, ये गाना है फ्रॉम द मूवी कॉकटेल और शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर में फिल्मी टॉनिक। यार दोस्तों देखिए, आज हमने बॉलीवुड के पिटारे से बहुत सी बातें, बहुत सी चर्चाएं करी कि कुछ ऐसे स्टार्स जिन्होंने छोटे पर्दे से शुरुआत करी लेकिन उसके बाद सिल्वर स्क्रीन पर ऐसा धमाल मचाया कि हर कोई उन्हें एक नए प्रोजेक्ट में किसी नए किस्से कहानियों के साथ सिल्वर स्क्रीन पर देखना चाहता है। वहीं बात करते हैं कुछ ऐसे स्टार जो कि सिल्वर स्क्रीन से तो गायब हो गए लेकिन एकदम से यानी अचानक से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एंट्री ली बिल्कुल ही डिफरेंट किरदार के साथ, तो लोगों ने उनको बहुत प्यार दिया और ये किरदार उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट भी बन गए। और कुछ ऐसे स्टार्स की किस्से कहानियां जब उनकी एंट्री ने इतना बड़ा धमाल मचाया, लोगों को लगा भैया ये एंट्री इतनी धांसू है कि फिल्म तो भैया सुपरहिट हो ही गई। और ऐसी और ना जाने कितनी सारी चर्चाएं हमने बॉलीवुड के गलियारे से पिटारे से की कि कौन कौन से स्टार्स हैं जो लोगों के दिलों पर हमेशा छाए रहे, तो कभी हीरो बनकर तो कभी विलन का किरदार बनकर भी लोगों का अच्छा खासा प्यार बटोरा। बाकी ऐसी अभी ढेरों बातें, ढेरों चर्चाएं फिल्मी गलियारे से आप सबके लेकर के आता रहूंगा कि कौन कौन सी नई कहानियां जो है बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। कुछ ऐसे स्टार किड्स जो कि डेब्यू करने वाले हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, तो कुछ सिल्वर स्क्रीन पर। लेकिन ये सारी चर्चाएं मैं करूंगा आज, नहीं आपसे फिर मुलाकात होगी सेम टाइम सेम जगह करूंगा ढेरों बातें। तब तक सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM को छटके और जाते जाते ये खूबसूरत सा गाना आप सभी के लिए।

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

बॉलीवुड में दो तरह के स्टार्स होते हैं, एक जो स्पॉटलाइट के पीछे भागते हैं और एक जो स्पॉटलाइट को अपने पीछे चलने पर मजबूर कर देते हैं। अक्षय खन्ना दूसरे वाले हैं। अक्षय खन्ना नाम सुनते ही याद आता है काम फेस, इंटेंस आइज और एक अलग ही एक्टिंग स्टाइल। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक एक्टर की नहीं है, ये कहानी है एक लेगेसी के प्रेशर की। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम बात कर रहे हैं लेजेंडरी एक्टर अक्षय खन्ना की। विनोद खन्ना जैसे सुपरस्टार के बेटे होना सुनने में ग्लैमरस लगता है ना, लेकिन असल में ये एक इनविजिबल बर्डन होता है। लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एंट्री लोगे और सुपरस्टार बन जाओगे। अक्षय का डेब्यू हुआ 1997 में फिल्म हिमालय पुत्र से। फिल्म फ्लॉप, हाँ पहला ही स्टेप लड़खड़ा गया। लेकिन फिर आई बॉर्डर, एक मल्टी स्टारर फिल्म जहाँ सनी देओल, सुनील शेट्टी जैसे नाम थे और उस भीड़ में एक काम इमोशनल सोल्जर अक्षय खन्ना। उनकी आंखों में जो इनोसेंस थी ना, उसने लोगों को नोटिस करने पर मजबूर कर दिया। वो हीरो नहीं बने थे, वो एक याद बन गए थे। और आज भी जब भी हम लोग बॉर्डर फिल्म देखते हैं तो एक अल्टीमेट एक्टर नजर आता है अक्षय खन्ना के अंदर। तो आगे कैसे वो चॉकलेट बॉय बने और फिर सीरियस एक्टर बने, करेंगे इसके बारे में बात मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 FM पर आप सुन रहे हैं कामयाबी की।

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
2: प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
0: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
2: आवारा हूँ, आवारा हूँ।
0: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना ना भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: बॉलीवुड को कंफ्यूजन पसंद नहीं, या तो आप हीरो हो या कैरेक्टर एक्टर। पर अक्षय खन्ना वो दोनों के बीच का एक अनआंसर्ड क्वेश्चन थे। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम बात कर रहे हैं सुपरस्टार एक्टर अक्षय खन्ना की। 90s के एंड और 2000s के स्टार्ट में अक्षय ने चूज की अलग अलग स्क्रिप्ट्स। दिल चाहता है एक मॉडर्न अर्बन स्टोरी, सिड का कैरेक्टर शाय इमोशनल पेंटर टाइप। जब बाकी एक्टर्स लाउड थे, अक्षय साइलेंट थे, और वही साइलेंस सबसे लाउड फील हुआ। फिर आई ताल, जहां उन्होंने एक रिच ऑब्सेसिव लवर का रोल प्ले किया। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, उन्होंने टिपिकल हीरो बनने की कोशिश कभी नहीं की। नो सिक्स पैक, ना ओवर द टॉप डायलॉग्स, सिर्फ एक्टिंग। अक्षय खन्ना ने कभी हीरो बनने की एक्टिंग करी ही नहीं, उन्होंने बस एक्टिंग को हीरो बना दिया। और बीच में जब वो गायब हुए तो सब लोगों के मन में सवाल था कि अक्षय है कहाँ, क्या वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए गए हैं। तो सवाल के पीछे का जवाब करेंगे इसके बारे में बात, मगर थोड़ी देर बाद। आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।
1: हो गया

खैरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हक है।

हर एक्टर का एक डाउनफॉल होता है, पर कुछ लोग गिरते नहीं, बस भीड़ से बाहर निकल जाते हैं क्वाइटली। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम बात कर रहे हैं लेजेंडरी एक्टर अक्षय खन्ना की। और अक्षय खन्ना भी ऐसे ही थे, वो भीड़ से बाहर निकल गए चुपचाप। 2000s के मिड तक अक्षय खन्ना सडनली कम दिखने लगे, ना पार्टीज, ना कॉन्ट्रोवर्सीज, ना पीआर ड्रामा, लोग बोलने लगे करियर खत्म। लेकिन सच क्या था, अक्षय खन्ना को रेस पसंद ही नहीं थी। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा था, आई डोंट एंजॉय द प्रोसेस ऑफ फिल्म मेकिंग एनीमोर। ये लाइन सिंपल लगती है, पर बॉलीवुड के कॉन्टेक्स्ट में ये रेबिलियन है। जहां लोग स्ट्रगल करते हैं एक चांस के लिए, वहां एक एक्टर वॉलंटेरिली पीछे हट रहा है। वो हार के नहीं गए थे, वो चूज करके चले गए थे। और फिर उसके बाद जब उनका हुआ कम बैक, तो ये बात तो शायद सभी लोग जानते हैं। तो करेंगे इनके कम बैक के बारे में भी बात, मगर थोड़ी देर बाद। अभी फिलहाल रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए गाना। आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान, और मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
1: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए है।
0: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
2: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
3: इस इलाके में नए आए हो साहब, क्योंकि हेलमेट पहन के राइड करने का रूल बच्चा बच्चा जानता है।

जब सबको लगा कहानी खत्म हो गई, तब एक साइलेंट एंट्री हुई और सबको याद आ गया असली एक्टर किसे कहते हैं। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम बात कर रहे हैं सुपरस्टार एक्टर अक्षय खन्ना की। साल 2016, डिशो, एक छोटा सा रोल लेकिन इम्पैक्टफुल। हम बात कर रहे हैं अक्षय खन्ना की। फिर आई मूवी मॉम, श्रीदेवी के अपोजिट एक शार्प कॉप, और फिर अंधाधुन, एक नेगेटिव अनप्रेडिक्टेबल कैरेक्टर, और अक्षय खन्ना ने स्क्रीन चुरा ली। उनकी एक्टिंग में एक अजीब सा काम मेनिस था। वो चिल्लाते नहीं पर डरा देते थे। वो कमबैक नहीं था, वो बस एक रिमाइंडर था कि मैं वापस आने वाला हूँ। और कैसे उन्होंने करी वापसी, इसके बारे में तो शायद हम सभी लोग जानते हैं, मगर और भी बातें करेंगे अक्षय खन्ना के बारे में मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए ये गाना, आप सुनते रहिए कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट

बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूँ भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

हर एक्टर को अवार्ड्स नहीं मिलते, पर कुछ एक्टर्स को रिस्पेक्ट मिलती है और वो ज्यादा पावरफुल होती है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज हम कामयाबी की उड़ान में बात कर रहे हैं अक्षय खन्ना की। आज भी अक्षय खन्ना कोई सोशल मीडिया किंग नहीं है, ना वो हेडलाइंस चेज करते हैं, लेकिन जब भी वो स्क्रीन पर आते हैं ऑडियंस ऑटोमेटिकली सीरियस हो जाती है। सेक्शन 375 उनका रोल अमेजिंग था, दृश्यम 2 हर रोल में एक मैच्योरिटी, एक कंट्रोल। उनका करियर एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो जिगजैग है, अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन रियल है, और शायद इसीलिए वो रिलेटेबल भी है। अक्षय खन्ना सुपरस्टार नहीं बने क्योंकि वो उससे भी बड़ा बनना चाहते थे, और शायद वो बन भी गए। एक एक्टर जिसे समझने के लिए वक्त लगता है, और शायद इसी वक्त ने बना दिया उन्हें रहमान डकैत। हम सभी ने मूवी देखी है धुरंधर, और उसमें गजब की एक्टिंग करी थी अक्षय खन्ना ने, और ऐसे ही बन गए वो एक सुपरस्टार। तो चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए और मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलूंगा आप सभी से फिर से सोमवार से शुक्रवार शाम 5 से 8। तब तक ले बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।
2: सड़क पे चलते समय सबसे पहले सुरक्षा के बारे में सोचें। आपका कहीं जल्दी पहुंचने से ज्यादा जरूरी है आपका घर सही सलामत पहुंचना। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

बात है ना, कुछ गाने सिर्फ गाने नहीं होते, दे बिकम इमोशन, मेमोरीज एंड मोटिवेशन. अभी जो गाना आपने सुना है सी यू अगेन, कहीं ना कहीं ये उन लोगों के लिए भी है जो लाइफ में बहुत दूर निकल जाते हैं लेकिन उनकी जर्नी आसान नहीं होती. हेलो हाई, यू ऑल आर लिसनिंग रेडियो महारानी 89.6 एफएम कुछ हटके. मैं आपके साथ गीत हूँ और शो लेकर आ गई हूँ बिजनेस अनप्लग्ड. और आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिनके पास शुरुआत में ना कनेक्शंस थे, ना लग्जरी थी और ना पावरफुल इंग्लिश. बस था तो एक सपना और उस सपने के पीछे भागने की हिम्मत. अ स्मॉल टाउन बॉय, सिंपल मिडिल क्लास फैमिली, हिंदी मीडियम बैकग्राउंड और फिर अचानक एक ऐसी दुनिया जहां लोग लैंग्वेज से जज करते हैं. इमेजिन बीइंग ब्रिलियंट बट स्टिल फीलिंग लेफ्ट आउट, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनकी इंग्लिश फ्लुएंट नहीं थी. कभी जो लड़का टॉपर हुआ करता था, अब वही लड़का खुद को क्राउड में लॉस्ट फील करने लगा. लेकिन कुछ लोग सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते, दे चेंज द सिचुएशन इटसेल्फ. उन्होंने खुद कोडिंग सीखी, इंग्लिश सीखी, रिस्क लिया, फेलियर्स देखे और वो रास्ता चुना जिससे लोग अक्सर डरते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप. एक ऐसा फेज भी आया जब फैमिली ने कहा बस करो, कंपनी बंद करो, स्टेबल नौकरी कर लो. और ऑनेस्टली उस वक्त की बात बहुत प्रैक्टिकल थी, बिकॉज एट द एज ऑफ 27 उस इंसान की सैलरी सिर्फ 10,000 थी. इतनी कम के रिश्ते तक आने बंद हो गए थे, बट डेस्टिनी हैड डिफरेंट प्लान्स. आज वही इंसान इंडिया के डिजिटल रेवोल्यूशन का एक बड़ा चेहरा बन चुका है. फ्रॉम मोबाइल रिचार्ज टू मूवी टिकट्स टू ऑनलाइन पेमेंट्स, आज करोड़ों लोग उसकी बनाई हुई टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, शायद बिना ये जाने कि उसके पीछे की कहानी कितनी ज्यादा स्ट्रगल से भरी हुई है. तो आज के स्पेशल एपिसोड में हम बात करेंगे सक्सेस की नहीं, सक्सेस के पीछे वाले अकेलेपन की, प्रेशर की, फेलियर्स की और उस हंगर की जो एक नॉर्मल इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है. लेकिन अभी नाम रिवील नहीं करूंगी, बिकॉज अगले लिंक में मैं आपको मिलवाने वाली हूँ उस बिजनेसमैन से जिसने सिर्फ कंपनी नहीं बनाई बल्कि इंडिया की पेमेंट हैबिट बदल दी. स्टे ट्यून्ड, दिस इज बिजनेस अनप्लग्ड विद आरजे गीत.

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड और मैं आपके साथ गीत हूँ। अभी तक हम उस इंसान की बात कर रहे थे जिसकी स्टोरी छोटे शहर से शुरू होकर बिलियन डॉलर सक्सेस तक पहुँची। अब टाइम है नाम रिवील करने का, बट ऑनेस्टली ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये इंडिया के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा चैप्टर है। द मैन वी आर टॉकिंग अबाउट इज विजय शेखर शर्मा, यस द फाउंडर ऑफ पेटीएम। अगर आज इंडिया में कोई चाय वाले से लेकर शॉपिंग मॉल तक QR कोड स्कैन कर रहा है तो उस रेवोल्यूशन के पीछे कहीं ना कहीं विजय शेखर शर्मा का विजन खड़ा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है, उन्होंने शुरुआत बिलियनेयर बनकर नहीं की थी। ही वॉज जस्ट अ स्मॉल टाउन बॉय फ्रॉम उत्तर प्रदेश, हिंदी मीडियम बैकग्राउंड, टीचर फादर, सिंपल फैमिली, और शायद इसी वजह से उनकी स्टोरी इतनी रिलेटेबल लगती है क्योंकि कहानी प्रिविलेज की नहीं है, ये कहानी हसल की है। अ बॉय हु वंस स्ट्रगल टू इवन स्पीक इंग्लिश आज इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के साथ बिलियन डॉलर मीटिंग करता है। अ मैन जिसे कभी 10,000 सैलरी पर लोग सेटल हो जाओ बोलते थे, आज उसी इंसान की कंपनी ने इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट IPO लॉन्च किया। बट ट्रस्ट मी, सक्सेस सुनने में जितनी ग्लैमरस लगती है ना दोस्त, उतनी होती नहीं है। बिहाइंड एवरी बिग कंपनी देयर इज अ फेज ऑफ लोनलीनेस, कंफ्यूजन, सेल्फ डाउट एंड साइलेंट सेक्रीफाइसेस। विजय शेखर शर्मा की जर्नी में भी वो फेज आया था जब उन्हें लगा शायद वो पीछे रह गए हैं, जब फैमिली को समझ नहीं आता है कि वो एग्जैक्टली क्या कर रहा है। एंड समवेयर दैट्स द मोस्ट ह्यूमन पार्ट ऑफ हिज स्टोरी, क्योंकि जब आपके ड्रीम्स लोगों को समझ नहीं आते हैं तब सबसे मुश्किल होता है खुद पर बिलीव करते रहना। लेकिन उन्होंने किया, उन्होंने सिर्फ बिजनेस बिल्ड नहीं किया, उन्होंने इंडिया की हैबिट बदल दी। रिचार्ज ऐप से शुरू हुई जर्नी आज बैंकिंग, टिकट्स, इंश्योरेंस, गोल्ड इन्वेस्टमेंट, एवरीथिंग सब तक पहुंच चुकी है। और सबसे इमोशनल बात, एक दिन उनकी माँ न्यूज़पेपर पढ़ रही थी और उन्होंने उनसे पूछा, सच में तुम्हारे पास इतना पैसा है? इमेजिन दैट मोमेंट, जब एक मिडिल क्लास मदर को खुद यकीन ना हो कि उनका बेटा इतना बड़ा नाम कमा चुका है। लेकिन दोस्तों, हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक बच्चा होता है जिसने कभी क्वाइटली स्ट्रगल किया होता है। तो अब मैं बात करूंगी उसी स्ट्रगल के बारे में, उनके चाइल्डहुड, उनकी एडुकेशन, फैमिली बैकग्राउंड, कि कैसे एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट ने अपने ड्रीम्स को लिमिटेशन नहीं बनने दिया। तो स्टे ट्यून, यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: आज है साइबर सिक्योरिटी एंड रोड सिक्योरिटी का तंदूरी तड़का, जो ऐप्स आपके फोन से लोकेशन, कॉन्टैक्ट, फोटो, सबने हमेशा सब मांगे उन्हें बाय बाय बोलकर विदाई दे दो। और ईमेल्स लाइक क्लिक टू विन प्राइज और अकाउंट इज इन डेंजर या पार्सल इज अराइविंग, अरे मेरे भाई मैंने मैथ्स की किताब तक नहीं मंगाई, कौन सा पार्सल ला रहा है।

Hey, welcome back. You are listening to Business Unplugged. आज तक आपने विजय शेखर शर्मा को एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की तरह देखा होगा, but every successful entrepreneur was once just a kid with confusion, fear and dreams. So let's go back to the beginning. विजय शेखर शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में हुआ, a very simple middle class family. उनके फादर एक स्कूल टीचर थे, idealistic, disciplined और एक्स्ट्रा इनकम के लिए ट्यूशन भी पढ़ाते थे. मदर वॉज अ होम मेकर, सिंपल फैमिली वैल्यूज, सिंपल लाइफ स्टाइल. लेकिन ड्रीम्स छोटे नहीं थे. अब इमेजिन कीजिए कि सिर्फ 14 साल की उम्र और कोई बच्चा 12th पास कर ले. साउंड्स अनबिलीवेबल ना? लेकिन विजय शेखर शर्मा ने यही किया. ही वॉज ब्रिलियंट इन स्टडीज, स्कूल टॉपर, शार्प माइंड, और शायद इसी वजह से इन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया. और यही से उनकी लाइफ में सबसे बड़ा टर्न आया, बिकॉज टैलेंट होने के बावजूद उन्होंने खुद को अकेला फील करना शुरू कर दिया. रीजन इंग्लिश. उन्होंने पूरी स्कूलिंग हिंदी मीडियम से की थी और सडनली वो एक ऐसे एनवायरनमेंट तक पहुंच गए थे जहां हर कोई फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा था. क्लासेस इंग्लिश में, बुक इंग्लिश में, कॉन्वर्सेशन इंग्लिश में. और एक लड़का जो इंटेलिजेंट था लेकिन लैंग्वेज बैरियर की वजह से खुद को पीछे महसूस करने लगा था. उन्होंने खुद कहा था कि एक ऐसा टाइम आया जब वो इतने फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि कॉलेज जाना तक बंद कर दिया था. इमेजिन द प्रेशर जब आप कैपेबल हो लेकिन खुद को एक्सप्रेस न कर पाओ. बट दिस इज द पार्ट आई पर्सनली लव अबाउट हिज स्टोरी. उन्होंने हार नहीं मानी. He started learning English on his own. पुरानी मैगजीन्स पढ़ी, बुक्स पढ़ी, फ्रेंड्स की हेल्प ली और एक ही किताब का हिंदी और इंग्लिश वर्जन साथ में पढ़ते थे, जस्ट टू अंडरस्टैंड वर्ड्स बेटर. और शायद यही डिफरेंस होता है ड्रीमर और अचीवर में. ड्रीमर सिर्फ सोचते हैं, अचीवर्स अनकंफर्टेबल होकर भी सीखते हैं. लेकिन कॉलेज के दौरान ही उनका फोकस सिर्फ डिग्री पर नहीं रहा, उन्होंने कोडिंग सीखनी शुरू की. टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट बढ़ने लगा. While others were looking for jobs, he was trying to build something for his own. उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जिसे कुछ बड़े न्यूज पब्लिकेशंस ने यूज करना भी शुरू कर दिया. एंड यस, उन्होंने एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब शुरू की, लेकिन सिर्फ 6 महीने, बिकॉज समवेयर द एंटरप्रेन्योर इनसाइड हिम वाज टू रेस्टलेस फॉर अ रेगुलर लाइफ. उन्होंने जॉब छोड़ दी और दोस्तों के साथ अपनी कंपनी शुरू कर दी. अब बॉस, यहाँ से स्टोरी इंटरेस्टिंग नहीं बल्कि डेंजरस होने लगती है, बिकॉज ड्रीम शुरू हो चुका था लेकिन सक्सेस अभी बहुत दूर थी. तो अब मैं बात करूंगी उसी स्ट्रगल के बारे में जब बिजनेस चल नहीं रहा था, सैलरी सिर्फ 10,000 थी, फैमिली प्रेशर बढ़ रहा था और कैसे इन्होंने अपनी फर्स्ट रियल टीम बनाई. सो स्टे ट्यून, यू आर लिसनिंग टू रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके.

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो। क्योंकि उनका साथ ही हमारा सुकून है।

गाना है फ्रॉम द मूवी धुरंधर और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है शो है बिजनेस अनप्लग्ड में, आपके साथ गीत हूँ। अब तक हमने जाना कैसे विजय शेखर शर्मा एक स्मॉल टाउन हिंदी मीडियम स्टूडेंट से एंटरप्रेन्योर बनने की जर्नी पर निकले, लेकिन ऑनेस्टली ड्रीम शुरू करना आसान होता है, उसे सर्वाइव कराना सबसे मुश्किल। बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप लुक्स एक्साइटिंग ऑन इंस्टाग्राम बट इन रियल लाइफ इट कैन ब्रेक यू मेंटली, इमोशनली एंड फाइनेंशियली। विजय शेखर शर्मा के साथ भी यही हुआ, इन्होंने जॉब छोड़ दी, अपने दोस्तों के साथ कंपनी शुरू की, आइडियाज थे, पैशन था, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं थी और मिडिल क्लास फैमिलीज में सबसे बड़ा प्रेशर पता क्या होता है, स्टेबल हो जाओ यार। उनके फादर भी यही कहा करते थे, कंपनी बंद करो, नौकरी कर लो, अगर 30,000 भी मिल रहे हैं तो बहुत है। और एक सच बात बताऊं, पेरेंट्स कभी गलत नहीं होते, वो बस हमें स्ट्रगल में टूटते हुए नहीं देख सकते। और मैंने कहीं जाकिर की वो एक लाइन सुनी थी कि माँ बाप हमारे पैशन से नहीं जलते, वो बस इस बात से दुखी होते हैं कि कहीं हम गरीब ना रहें। लेकिन उस टाइम विजय शेखर शर्मा एक ऐसे फेज में थे जहां ड्रीम्स और रियलिटी दोनों लड़ रहे थे, एक तरफ थे एम्बिशन और दूसरी तरफ बिल्स। उन्होंने खुद बताया था कि एक ऐसा टाइम भी आया जब उनकी सैलरी सिर्फ 10,000 रुपए थी। कैन यू इमेजिन बिल्डिंग बिग ड्रीम्स विद ऑलमोस्ट नो मनी, इतने कम इनकम के रिश्ते तक आने बंद हो गए। इन्होंने खुद को इन एलिजिबल बैचलर तक कह दिया। दैट लाइन साउंड्स फनी मे बी बट समवेयर इट्स पेनफुल टू, क्योंकि सोसाइटी सक्सेस को नहीं रिजल्ट को रिस्पेक्ट करती है। जब तक स्ट्रगल चल रहा होता है लोग आपको कंफ्यूज समझते हैं, लेकिन इसी फेज में इन्होंने हार नहीं मानी। इंस्टेड ऑफ क्विट इन्होंने सीखा कंटिन्यू रखना। कोडिंग, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, मोबाइल इको सिस्टम, वो फ्यूचर को समझ रहे थे जब बाकी लोग प्रेजेंट में स्टक थे। और यहीं से धीरे धीरे उनकी टीम बननी शुरू हुई, नॉट अ बिग कॉर्पोरेट टीम, बस कुछ लोग जो आइडियाज पर बिलीव करते थे। कई बार ऑफिस छोटा था, रिसोर्सेज कम थे, लेकिन विजन बड़ा था। और बिजनेस में सबसे पावरफुल चीज फंडिंग नहीं होती, बिलीफ होता है। जब कुछ लोग आपके ड्रीम पर ट्रस्ट करते हैं ना, वहीं से एम्पायर बनना शुरू हो जाता है। इन्होंने पहले कई एक्सपेरिमेंट किए, कई प्रोडक्ट्स चले नहीं, फेलियर्स आए, लेकिन इन्होंने इंटरनेट और मोबाइल टेक्नोलॉजी की पावर को बहुत पहले पहचान लिया था। एंड देन एक आइडिया आया जिसने सब कुछ चेंज कर दिया, अ सिंपल डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म जिसे आज दुनिया पेटीएम के नाम से जानती है। लेकिन पेटीएम ओवरनाइट सक्सेस नहीं था, उसके पीछे स्लीपलेस नाइट्स थी, टीम प्रेशर था, फाइनेंशियल रिस्क था, और वो फियर भी था कि अगर ये नहीं चला तो क्या होगा। लेकिन कभी कभी लाइफ उन्हीं लोगों को रिवॉर्ड करती है जो अनसर्टेनिटी में भी खुद पर बेट लगाते हैं। और मैं बात करने वाली हूँ थोड़ी देर बाद उस मैसिव सक्सेस की, कंपनी का टर्नओवर, ग्लोबल इन्वेस्टर्स, इंडियाज बिगेस्ट आईपीओ, और आज प्रेजेंट टाइम में पेटीएम कहाँ खड़ा है अब सबको मालूम है। सो स्टे ट्यून्ड, यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड विद आरजे गीत।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: सीट बेल्ट टाइट रखो, स्पीड ब्रेकर को इग्नोर करोगे तो फ्रैक्चर। रोड की लेन और इंटरनेट की चेन दोनों मत तोड़ना। एक छोटी सी गलती और सब आउट ऑफ कंट्रोल। और बस याद रखो, अलर्ट रहो, सिक्योर रहो और हर दिन को सेफ मोड पर चलाओ।

0: yes, yes. Say it again.
1: Welcome back again. You are listening to Business Unplugged and मैं आपके साथ गीत हूँ और आज की जर्नी अब तक पहुँच चुकी है उस पॉइंट पर जहाँ स्ट्रगल कहानी नहीं रहती बल्कि हिस्ट्री बन जाती है। विजय शेखर शर्मा एक ऐसा नाम जिसे आज इंडिया सिर्फ बिजनेसमैन नहीं डिजिटल रेवोल्यूशन के फेस की तरह जानती है। लेकिन सोचिए जिस इंसान को कभी इंग्लिश बोलने में हेजिटेशन होती थी, जिसकी सैलरी सिर्फ 10,000 थी, जिसे लोग स्टेबल हो जाओ बोलते थे, आज उसी इंसान की कंपनी करोड़ों इंडियंस की डेली लाइफ का हिस्सा बन चुकी है। पेटीएम ने शुरुआत सिर्फ मोबाइल रिचार्ज प्लेटफॉर्म के तौर पर की थी, बट देन एवरीथिंग चेंज्ड। धीरे धीरे लोगों ने बिल्स पे करने शुरू कर दिए, मूवी टिकट्स, फ्लाइट बुकिंग, ट्रेन टिकट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, गोल्ड इन्वेस्टमेंट, यूपीआई पेमेंट्स, और देखते ही देखते पेटीएम सिर्फ ऐप नहीं रहा बल्कि हैबिट बन गया। आज इंडिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसने कभी ना कभी पेटीएम यूज ना किया हो। एंड देन केम द मोमेंट जिसने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। पेटीएम लॉन्च्ड वन ऑफ द इंडियाज बिगेस्ट आईपीओज, 18,300 करोड़ रुपीज। जस्ट इमेजिन दैट नंबर। एक सिंपल से लड़के का सपना पूरे स्टॉक मार्केट की हेडलाइन बन चुका था। ग्लोबल इन्वेस्टर्स लाइक सॉफ्ट बैंक, बर्कशायर हैथवे एंड एंट ग्रुप सबने इस विजन पर ट्रस्ट किया। 2017 में विजय शेखर शर्मा इंडिया के यंगेस्ट बिलियनर्स में शामिल हो गए। लेकिन सक्सेस का सबसे इमोशनल मोमेंट कौन सा था? जब उनकी मदर ने न्यूज़पेपर पढ़कर पूछा, सच में तुम्हारे पास इतना पैसा है क्या बेटा? एंड ऑनेस्टली उस मोमेंट में शायद पूरी जर्नी छुपी हुई है। अ मदर हु वंस सॉ हर सन स्ट्रगलिंग साइलेंटली, अब उसी बेटे को दुनिया सेलिब्रेट कर रही थी। लेकिन स्टोरी यहाँ सिर्फ पैसे की नहीं थी, ये स्टोरी है बिलीव की। बिकॉज विजय शेखर शर्मा ने हमें एक चीज सिखाई है, लैंग्वेज बैरियर परमानेंट नहीं होता, स्मॉल टाउन वीकनेस नहीं होता, मिडिल क्लास बैकग्राउंड लिमिटेशन नहीं होता। अगर कुछ पावरफुल होता है तो वो होता है विजन। और शायद इसीलिए हर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर पहले मिसअंडरस्टूड होता है। आज जब लोग क्यूआर कोड स्कैन करते हैं दे सी कन्वीनियंस, लेकिन इसके पीछे किसी की स्लीपलेस नाइट्स, फेलियर्स, लोनलीनेस और इयर्स ऑफ हसल छुपे होते हैं। और यही वजह है कि आज की स्टोरी सिर्फ बिजनेस स्टोरी नहीं थी, इट वॉज अ रिमाइंडर कि ड्रीम्स का कोई एक्सेंट नहीं होता। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में स्टक फील कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि रिसोर्सेज कम है, इंग्लिश वीक है, सपोर्ट नहीं है, देन रिमेम्बर दिस स्टोरी, बिकॉज समटाइम्स द बॉय एवरीवन डाउट्स बिकम द मैन हिस्ट्री रिमेम्बर्स। मैं हूँ गीत और आप सुन रहे थे बिजनेस अनप्लग्ड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड विद अनदर inspiring story, another unstoppable journey. Till then, keep dreaming, keep building and never underestimate your beginning. So, sunte rahe Radio Maharani 89.6 FM, kuch hatke.

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

क्या कभी सोचा है कि कुछ चीजें इतनी सिंपल होती हैं कि हम उनकी वैल्यू समझ नहीं पाते। ना उसका कोई एड आता है, ना कोई सेलिब्रिटी उसे प्रमोट करता है, ना वो किसी फैंसी कैफे के मेन्यू में लिखा होता है। पर फिर भी वो गर्मी से लड़ता है, भूख से लड़ता है और थकान से भी लड़ता है और चुपचाप अपना काम करता रहता है। वो कहा है कि ना शोर है ना शो है, ना कोई पैकेजिंग का जोर है, जो सच में काम आए वही असली पावर है। 89.6 FM पर मैं हूँ आज अंशलि आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ कल्चर कारवा, जहाँ हम बात करने वाले हैं आज एक ऐसी देसी हीरो की जो दिखता सिंपल है पर अंदर से सॉलिड है, जिसे कहा जाता है सत्तू। तो चलिए फिर आइए जानते हैं आखिर सत्तू है क्या। सत्तू सिर्फ एक पाउडर नहीं है, ये भुने हुए चने या जौ का आटा होता है जिसे पीस कर बनाया जाता है। पर असली बात सिर्फ इतनी नहीं, ये हर रोज की जिंदगी का हिस्सा है। फिर चाहे बात करें बिहार, झारखंड और यूपी के घरों में, सुबह घर से निकलते वक्त एक ग्लास सत्तू पीना मतलब दिन भर की एनर्जी रेडी। ना फ्रिज की जरूरत, ना गैस की, बस पानी, सत्तू और जिंदगी चल पड़ी। जहाँ सिंप्लिसिटी होती है वही सस्टेनेबिलिटी होती है, ये सब सिखाया हमें सत्तू ने। और भी बहुत सारी चीजें हैं सत्तू से जुड़ी हुई, जानेंगे इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

89.6 FM पर आप सुन रहे हैं कल्चर एल्बम। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे अंजलि और आज हम बात कर रहे हैं सत्तू की। तो आइए चलिए जानते हैं सत्तू का इतिहास, सफर और जैसे। अब सोचिएगा जरा, जब ना प्रोटीन बार्स थे ना पैक्ड फूड था, तब लंबी यात्रा पर जाने वाले लोग क्या ले जाते थे? जवाब है सत्तू। पुराने दौर में सैनिक और यात्री अपने साथ सत्तू रखते थे, क्योंकि हल्का था, जल्दी बन जाता था और सबसे जरूरी लंबे समय तक एनर्जी देता था। यानी एक मुट्ठी सत्तू और आदमी घंटों तक चल सकता था इसे पीकर। वो कहा है कि सफर लंबा हो या रास्ता कठिन, साथ अगर सत्तू हो तो डर कैसा, जो मिट्टी से ताकत ले उसका हौसला कम कैसा। तो आइए चलिए जानते हैं सत्तू के पीछे की साइंस, आखिर क्यों कहा जाता है इसे देसी सुपर फूड। अगर बात करें आज के जमाने में लोग प्रोटीन शेक्स पे हजारों खर्च करते हैं, पर सत्तू में ऑलरेडी होता है हाई प्रोटीन, फाइबर, आयरन और साथ ही लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, यानी ये बॉडी को इंस्टेंट नहीं लेकिन सस्टेनेबल एनर्जी देता है। और जब इसमें नींबू, जीरा, नमक मिलता है तो ये सिर्फ ड्रिंक नहीं, एक एनर्जी ड्रिंक बन जाता है। जो चीज मिट्टी से मिले वो बॉडी को कभी चीट नहीं करती। जब आप सत्तू की कर ही रहे हैं इसके पीछे का साइंस भी जाना, तो वापस आकर जाएंगे टेस्ट का देसी कैनवस क्यों कहा जाता है इसे। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6

डोंट यू थिंक आजकल मच्छर कुछ ज्यादा बढ़ गए हैं? मार्केट में जाओ तो मच्छर, कहीं ना जाओ तो भी मच्छर। मतलब घर की अगर खिड़की हल्की सी भी खुली मिल जाए ना, इनको बस मौका चाहिए घर के अंदर आने का। ये वो बिन बुलाए मेहमान है जो बिना बुलाए जाते हैं, बिन बुलाए मेहमान वही तो होते। खैर, स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। अब मैं मच्छरों की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि गर्मियों का मौसम है और मच्छर तो आएंगे ही आएंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि इनको भी एसी की हवा चाहिए, कूलर की हवा चाहिए, इसलिए ये लोग भी अंदर आ जाते हैं। और सुबह सुबह अगर आप लोगों का जूता स्टैंड बना हुआ है घर में और वो घर के बाहर है, मीन्स सीढ़ी वाले एरिया के पास है, तो उसमें इतने सारे मच्छर बैठे होते हैं सुबह। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं मच्छरों की बात क्यों कर रहा हूँ। इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फरीदाबाद में मलेरिया के केसेस बढ़ रहे हैं। तो प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने घर के आसपास गंदा पानी ना जमा होने दो, क्योंकि अभी देखो बारिश हो रही है ना, इससे पानी जमा हो रहा है, और फिर पानी जमा होगा तो फिर उसमें मच्छर पनपेंगे और फिर उसके बाद वो हमारे घर के अंदर ही एंट्री लेंगे और फिर बीमारियां फैलाते हैं यही मच्छर। हो सके तो घर के अंदर नीम की पत्तियों का एक बार धुआं डाल देना, उससे बहुत फर्क पड़ता है। और आजकल तो अगरबत्तियां भी आ रही है ये मच्छर भगाने वाली, और बाकी जो केमिकल वाले जो कॉइल आती है और साथ में मशीन्स आती हैं, मुझे लगता है वो ठीक है एक बार के लिए, बट काफ़ी ज़्यादा हेल्थ पे इफेक्ट भी डालती है। तो आप लोग भी सही चॉइस चूज़ कीजिए, और यूट्यूब पर भी आप लोग बहुत सारे नुस्खे अपना सकते हैं। मतलब आप नुस्खे देखोगे ना, जब यूट्यूब पर जाओगे मच्छर घर से कैसे भगाएं, बस इतना डाल दो, इतने बढ़िया बढ़िया नुस्खे मिल जाएंगे आप लोगों को कि घर से मच्छर भी चले जाएंगे, आप लोगों को भी परेशानी नहीं होगी। और हो सके अगर आपका कोई बड़ा इंस्टीट्यूट है या फिर आपका घर का एरिया बड़ा है तो एक बार फॉगिंग ज़रूर करवा दीजिए अपने घर पर, ताकि सारे के सारे मच्छर दूर भाग जाएं और आप लोग भी मलेरिया से बच कर रहें। और हाँ, देखो मौसम बदला है, उसकी वजह से जो तबीयत खराब हो रही थी जो, वो ठीक हो चुकी है। मगर अब जो अगर तबीयत खराब आपको लग रही है, आपको बुखार लग रहा है, तो डॉक्टर को दिखाने में लापरवाही बिल्कुल भी मत करना। तो चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, आप सभी के लिए आदित्य भारद्वाज की आवाज में ये गाना। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े हैं साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम। तो अब से बी सेफ बी अवेयर।

0: शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ, तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है, और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन,

बचपन से ना एक ख्वाहिश मेरी है, और वो ख्वाहिश है कि घर वालों को या फिर किसी भी अपने चाहने वाले को या फिर किसी अपने करीबी को कोई ना कोई अच्छा सरप्राइज दो। और मुझे लगता है कि अभी तक तो ये ख्वाहिश ख्वाहिश ही है, बट आगे आने वाले टाइम में मैं कोई ना कोई बड़ा सरप्राइज तो ज़रूर दूंगा, और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के मन में भी ऐसी ख्वाहिश ज़रूर होगी। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, और जो मैं ये बात बोल रहा हूँ ये एक्चुअली में एक लड़के ने पूरा कर दिखाया। एक इंजीनियर है और यूट्यूब पर और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर उन्होंने एक वीडियो शेयर की है, और अपने पापा को स्कूटी सरप्राइज में दे रहा था। ऐसा इस लड़के ने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी मम्मी मैं ना पापा के लिए स्कूटी लेकर आया हूँ, और पापा का रिएक्शन देखते हैं। और असलियत में वो लड़का लेकर आया था BMW की गाड़ी, बिल्कुल ब्रांड न्यू BMW, और ये बात उसकी मम्मी को भी नहीं पता था। और एक्चुअली मैं चाबी पकड़ाई गई अंकल जी को और बोला गया बटन दबाओ आपकी स्कूटी स्टार्ट हो जाएगी। एंड जैसे ही अंकल ने बटन दबाया तो BMW स्टार्ट हो गई एंड everyone was shocked। और यहाँ पर जो रिएक्शन था ना वो सच में बहुत ज़्यादा मतलब वायरल हो रहा है वीडियो, और साथ ही साथ मतलब हर किसी के मन में होता है कि अपने पेरेंट्स को या फिर अपने चाहने वालों को या फिर अपने साथ के करीबी को कोई ना कोई अच्छा सरप्राइज दे। और इस वीडियो के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लाइक्स भी आ रहे हैं, लोग अलग अलग कमेंट्स भी कर रहे हैं, सब लोग सराहना कर रहे हैं इस लड़के की, और सब लोग यही बोल रहे हैं कि भाई मेरा भी सपना है, मैं भी ज़रूर इसको एक दिन पूरा करूँगा। तो आप लोगों के भी बहुत सारे सपने होंगे, और देखो जहाँ पैसों की बात आती है ना वहाँ पर लोग कुछ भी कर जाते हैं अपनी फैमिली के लिए, बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शर्त के नाम पर भी कुछ कर जाते हैं। और एक आदमी शर्त के नाम पर अपने कपड़े उतार के भाग गया, कहाँ पर कैसे सब कुछ बताऊंगा मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी सुनते जाइए, आप सभी के लिए गाना ब्राउन मुंडे ओनली ऑन 89.6 FM। कुछ

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा सुन।

0: अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ, तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद,
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके,
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी

0: गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
1: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
0: क्या बात कर रहे हो?
1: हाँ
0: आगे सुनो।
2: सुनाओ।
0: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
1: हाँ, वैसे दिमाग का दही हो रखा है, और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
0: अरे क्लास तो पीती जा, सुन।

अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि मैं आपको 500 रुपए दूंगा और आपको ये काम करना है, तो क्या आप कर लोगे? मगर अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको 1000 रुपए दूंगा और ये काम करना है, तो क्या आप कर लोगे? मैं अगर अपने दोस्त को बोलूं ना, भाई मैं 5000 रुपए दे रहा हूं तेरे को, ये काम करना है, तो वो तो अपने कपड़े उतार के भाग जाएगा। और शायद इस इंसान ने भी यही किया। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड जो मैं ये बात बोल रहा हूँ ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैंने जब इसको पढ़ा, आई वाज लाइक ये तो मेरा दोस्त भी कर देगा। तो एक्चुअली में हुआ ये हाथरस यूपी में, सिर्फ और सिर्फ 5000 रुपए की शर्त जीतने के लिए आदमी ने अपने सारे कपड़े उतार दिए और पूरे गांव में दौड़ाए। मतलब एक्चुअली में हुआ ये, उसको बोला कि अपने सर पे तुझे बनियान बांधनी है और सारे कपड़े उतार देने हैं, और फिर उसके बाद तुझे पूरे गांव में दौड़ना है। अगर तूने ऐसा कर दिया तो हम तुझे 5000 रुपए देंगे। और ये लड़का निकला बावड़ा और इसने सच में कर डाला ये सब। लाइक अपने पूरे कपड़े उतार दिए, फिर भागा इधर से उधर। और इसकी जब हरकतें सामने आई लोगों के, तो लोगों ने आपत्ति भी जताई है, इसकी वीडियो भी बना दी लोगों ने, और फिर उसके खिलाफ कंप्लेंट भी करी पुलिस में। बट पुलिस भी अभी क्या करेगी? पुलिस ने ग्राम प्रधान से बात करी, तो ग्राम प्रधान ने बोला देखो ऐसा है, ये शर्त तो वैसे हम

ही रखी थी। तो एक्चुअली में ये है कि ग्राम प्रधान के साथ और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इसके सामने ये शर्त रखी थी, और उसने कहा शर्त तो मैं ऐसी जीत लेता हूँ, और फिर ये दौड़ पड़ा और ये शर्त भी जीत गया। तो अभी सवाल ये है कि क्या आपके भी दोस्त या फिर आपके अंदर भी इतनी हिम्मत है कि आप शर्त के लिए कुछ भी कर जाओ? मैं तो कभी ना कर पाऊँ, तो मैं तो अपना बता रहा हूँ। अगर आप लोग कर सकते हो तो शेयर कीजिएगा अपना एक्सपीरियंस। नंबर है जी 9654896896। फिलहाल आप सभी के लिए गाना रेडियो महारानी 89.4।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

अगर मैं जिंदगी में कभी भी 500 में से 400 नंबर भी ले आता ना, शायद मेरे घर वाले बहुत ज्यादा खुश हो जाते, और अगर 450 ले आता तो बहुत बहुत बहुत ज्यादा खुश हो जाते, और अगर 490 अंक ले आता, मतलब 500 में से 490 मार्क्स, सोचो जरा, इमेजिन करो अगर आप लोगों के इतने आ जाते तो आप लोगों के भी घर वाले खुश हो जाते ना। मगर यहाँ पर एक लड़के के 10th के एग्जाम्स में 500 में से 499 मार्क्स आए, बट स्टिल उसके घर वाले खुश नहीं है। अरे ऊपर वाले से डरो अंकल आंटी प्लीज। स्वागत है जी आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। ICSE बोर्ड के रिजल्ट्स आए हैं और उसी रिजल्ट के बीच में एक लड़के का रिजल्ट वायरल हो रहा है, जहां पर वो वेस्ट बंगाल का लड़का है, सिलीगुड़ी में रहने वाला है। उसके 10th के एग्जाम्स में 500 में से 499 मार्क्स आए हैं, बट उसकी मम्मी ये कह रही है कि एक और मार्क्स ले आता तो अच्छा रहता, अगर वो थोड़ा और पढ़ लेता तो हम, मतलब ठीक है, हम दुखी नहीं होते, हम लोगों को एक मार्क्स का दुख है अभी भी। है ऐसा भी होता है क्या आंटी जी? ये जो 499 मार्क्स है ना, इसमें 3 बच्चे पास हो जाएंगे इतना तो हो ही जाएंगे यार 3 बच्चे पास। तो मुझे ऐसा लगता है, देखो थोड़ा बहुत तो सोचना चाहिए, क्योंकि 499 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और बच्चे का मोराल भी हाई करना चाहिए। लाइक 499 लेकर आया है, अच्छे मार्क्स लेकर आया है, आगे अगर उसको मोराल हाई करोगे, मतलब उसको अगर प्रेज करोगे, तो वो आगे और अच्छे मार्क्स ले आएगा, है कि नहीं? तो चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, आप सभी के लिए खूब सारे गाने बजते रहेंगे, और उन्हीं में से ये गाना सुनिए। इस गाने को मिक्स मैशअप है ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। वापस आकर और भी ढेरों बातें चलती रहेंगी मेरे दोस्त।

0: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
1: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाऊं, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
2: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूं। और अंकल मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
3: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो, तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। FM 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: पता नहीं, मैं तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर है।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

काफी बार मैं ये सोचता हूँ कि लोग कितने रुपए फूंक सकते हैं किसी बेतुकी चीज पे, फिर उसके बाद मेरे सामने कोई ना कोई वीडियो आ जाती है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। मैंने वो लोग देखे हैं जो

ने अपना प्राइवेट हेलीकॉप्टर बुक किया, फिर उसके बाद एक ग्लेशियर पे पहुंची। ग्लेशियर से डायरेक्ट इसने जो प्राकृतिक स्रोत होता है ना पानी का, वहां से इसने पानी पिया है। तो ऑल टोटल इसने बहुत ज्यादा खर्चा किया है। इनफैक्ट अगर मैं टोटल कैलकुलेट करूँ ना तो करोड़ों रुपए खर्च कर दिए सिर्फ और सिर्फ पानी पीने के लिए। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हमें अगर प्यास लगती है, हम लोग मार्केट में खड़े हैं, बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, तो हम लोग पहले तो अपने दोस्त से पूछते हैं कि भाई तेरे पास पानी है? अगर उसके पास नहीं होता फिर हम अपनी गाड़ी चेक करते हैं कि गाड़ी के अंदर पानी पड़ा है। अगर वहाँ पर भी नहीं होता फिर उसके बाद हम लोग अपनी जेब से 20 रुपये निकाल के पानी की बोतल खरीदते हैं और उसको पी लेते हैं। बट इस लड़की ने तो कुछ और ही कर दिया। खैर, इसको कुछ लोग कह रहे हैं दिखावा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि देखो भाई हमारे घर में तो आरओ का पानी आता है, हमें तो वो भी महंगा लगता है, तुम तो करोड़ों रुपये खर्च करके पानी पीने जा रहे हो। और मुझे ऐसा लगता है कि इस लड़की ने सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाने के लिए ये सब काम किया है। तो खैर, ये सब काम करते रहेंगे, अभी हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो रेडियो महारानी 89.6 पर आगे बढ़ते हैं इस गाने के साथ, मिक्स मैशअप, ये गाना आप सभी के लिए। रेडियो महारानी 89.6 पर बातें और गाने ही चलते रहेंगे मेरे दोस्त।

आमद सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकलें, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहनें। तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

save life. Of course, पर save water, save cinematic vibe. अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते. जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते. वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता. और ये गाना कभी नहीं बन पाता. रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना. जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है. रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी.

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकलें, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहनें। तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

क्या आप लोगों को याद है हम लोगों को कैशबैक मिला करता था कहाँ पर? जब हम लोग कोई भी ऐप इस्तेमाल करते थे और फिर उसमें क्या होता था, हम लोग पैसे भेजते थे तो कैशबैक मिल जाता था। मगर आजकल मिल ही नहीं रहा है, आजकल कूपन मिल रहे हैं कि आप लोग इस कंपनी के चश्मे खरीद लो, 500 रुपये ऑफ हो जाएगा। नहीं खरीदने यार हमें चश्मे। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। जितने भी UPI ऐप्स हैं उन सभी के थ्रू हम लोगों को कैशबैक मिला करता था, थोड़ा थोड़ा, भले 5 रुपये, 10 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, इतने मिल जाते थे, खुश हो जाते थे हम लोग कि हाँ हमने 100 रुपये की ट्रांजेक्शन करी, इस पर 2 रुपये मिल गए, 10,000 रुपये की ट्रांजेक्शन करी, इस पर 100 रुपये मिल गए, खुशी होती थी एक। बट आजकल हेडफोन के ऊपर ये लोग ऑफ दे रहे हैं, 70% ऑफ, हेडफोन खरीद लो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। हम लोगों की खुशियाँ इन छोटे छोटे चिल्लड़ों में थी और ये रियलिटी भी है। देखो इंसान को ना अगर कुछ भी चीज़ फ्री में मिल रही हो ना वो मना नहीं करता, तो कुछ लोग होते हैं जो मना करते थे, बट स्टिल मैं मोस्ट ऑफ द लोगों की बात कर रहा हूँ। तो आप लोग किस में फॉल करते हो बताइएगा ज़रूर। नंबर है जी वही 9654896896। अगर इस पर हम लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते तो आप व्हाट्सएप मैसेज भी छोड़ सकते हैं, कॉल उठाने में देरी हो सकती है मगर हाँ आपके रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी 89.6 पर KK पाजी की आवाज़ में आप सभी के लिए प्यारा

0: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3 R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो कहाँ चली?
1: बाय।
2: Life. Of course, पर save water, save cinematic vibe. अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

नेट की तदी मशीन पे बॉय ऑन द ट्रैक बेबी करे बाउंस जैसे हिटरों के चेक सर पे है क्राउन बेबी नो कैप सिक मेरी ट्रिप मेरी सिक वो कैप बच्चे बच्चे घोराटे मेरा रैप बेबी माइंड होते ब्लो जब बीट कर

0: बादशाह।
1: Let's go।
2: आज है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे और रेडियो महारानी 89.6 सभी को विश करता है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। और इसी के साथ साथ आज मेरे साथ दो एथलीट्स मौजूद हैं और अगली आवाज दीपिका एंड दृष्टि की आप सभी के सामने।
3: नमस्कार साथियों, मैं दीपिका रेडियो महारानी की तरफ से आप सभी को विश्व एथलेटिक्स दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। जो मेहनत और लगन से देश का नाम रोशन कर रहे हैं, खेल सिर्फ हमारे शरीर को मजबूत नहीं बनाता बल्कि हमें अनुशासन, आत्मविश्वास और जीवन की चुनौतियों से लड़ना भी सिखाता है। तो आइए हम खेलों को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं और एक स्वस्थ, सशक्त और फिट इंडिया के निर्माण में योगदान दें।
4: नमस्कार दोस्तों, मैं दृष्टि सैनी बोल रही हूँ और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो महारानी पर। आज वर्ल्ड एथलेटिक्स डे के खास मौके पर मैं सभी खिलाड़ियों और युवाओं को एक छोटा सा संदेश देना चाहती हूँ। एथलेटिक्स हमें सिर्फ दौड़ना नहीं सिखाता बल्कि गिरकर दोबारा उठना, मेहनत करना और अपने सपने के लिए लगातार आगे बढ़ना भी सिखाता है। हर एथलीट की मेहनत, उसका डिसिप्लिन और डेडिकेशन ही उसकी असली पहचान होती है। तो खुद पर विश्वास रखिए, मेहनत करते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ पूरे जुनून के साथ बढ़ते रहिए। मैं रेडियो महारानी की तरफ से सभी को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी। धन्यवाद।
2: थैंक यू सो मच दृष्टि एंड दीपिका, आप सभी को भी रेडियो महारानी की तरफ से वर्ल्ड एथलेटिक्स डे पर हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं तो बस इतना कहना चाहूंगा कि वेट मत करो किसी रिपोर्ट के आने की, आज से ही अपनी फिटनेस पर ध्यान दो और हो सके तो सिर्फ और सिर्फ एक जॉगिंग ही शुरू कर दो। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए। आप सभी के लिए ये गाना रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड वंडर आप सभी के साथ।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

भाई मौसम देख रहे हो आप लोग, अच्छा है ना मौसम बहुत ज़्यादा। मतलब दिन में गर्मी थी, उसके बावजूद भी गर्मी नहीं लग रही। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि संडे तक मौसम कैसा रहेगा, तो मौसम विभाग ने जारी कर दिया कि देखो आज रात को बारिश हो सकती है, हो सकता है अभी बाहर बादल आ चुके हों। अभी मैं स्टूडियो से बाहर जाऊँगा तो देखता हूँ बाहर का मौसम कैसा है, बट बता दूँ आपको संडे तक मौसम सुहाना ही रहने वाला है। मिनिमम टेम्परेचर 25 डिग्री तक जाएगा संडे तक, और अगर कल की बात करूं तो कल मिनिमम टेम्परेचर 22 तक जा सकता है, और आज रात को हल्की फुल्की बिजली भी गिर सकती है, साथ में बारिश भी होगी। तो देखते हैं अभी से कितनी देर बाद बारिश होती है, अभी तो 7:15 हो रहे हैं और टाइम अभी मेरे पास बहुत सारा है। तो देखो अब जब मौसम साफ हो जाएगा ना, फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट ट्यूसडे या वेंसडे थोड़ी बहुत बौछार देखने को मिल जाएगी, मगर फिर उसके बाद आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ गर्मी ही देखने को मिलेगी। मतलब मई अपनी चरम पर पहुंच जाएगा, मई वाली गर्मी शुरू हो जाएगी और फिर रुकने का नाम नहीं लेगी। तो चलिए अभी आप लोग भी अपना ख्याल रखिए इस मौसम में, क्योंकि मौसम अब पूरी तरह से बदलने वाला है, गर्मियाँ शुरू होने वाली है। और कह रहे थे ना कि सुपर एल नीनो में दो चीज़ होती है, या तो फिर गर्मी बढ़ती जाएगी और बढ़ती चली जाएगी, या फिर अनएक्सपेक्टेड बारिश होगी, बेमौसम बरसात, जो कि आजकल हो रही है। और मैं तो यही बोलूँगा कि बेमौसम बरसात थोड़ी थोड़ी होते रहे ताकि ये मौसम थोड़ा सा झेलने लायक हो जाए। बस अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए। आप सभी के लिए खामोशिया मूवी का टाइटल ट्रैक ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

फरीदाबाद अब रेडी हो जाओ एक पावरफुल यूथ मूवमेंट के लिए। दुनिया की सबसे बड़ी यूथ लेड ऑर्गेनाइजेशन IIMUN यानी इंडियाज इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइटेड नेशन अब आ रहा है फरीदाबाद में 8 से 10 मई 2026 तक। यहाँ सिर्फ डिबेट्स नहीं होंगी, यहाँ तैयार होंगे फ्यूचर लीडर्स। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। आप सुन रहे हैं मुझे यानी कि मोस्ट वांटेड मुंडा और सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM। 220 सिटीज, 35 कंट्रीज और 50 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को इंस्पायर करने के बाद अब फरीदाबाद के यंग माइंड्स को मिलेगा एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म जहां वो अपनी आवाज उठाएंगे लोकल से लेकर इंटरनेशनल इश्यूज तक। ग्रैंड इनॉग्रेशन से शुरू होगा ये 3 डे का एजुकेशनल फेस्टिवल जहां स्टूडेंट्स करेंगे पावरफुल डिस्कशंस, एक्साइटिंग कमिटी सेशंस और थॉट प्रोवोकिंग डिबेट्स यानी कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन और लीडरशिप स्किल्स का फुल पावर पैक एक्सपीरियंस। और एंड होगा एक ग्रैंड क्लोजिंग सेरेमनी के साथ जहां बेस्ट डेलीगेट्स को मिलेगा रिकग्निशन और अप्लॉज। और ये सब होने जा रहा है श्रीराम मिलेनियम स्कूल में। सो फरीदाबाद, अगर आप में है लीडरशिप का स्पार्क तो IIMUN का ये काउंसिल आपके लिए है। तो चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, ऐसे ही और भी फरीदाबाद की अपडेट्स लेकर आता रहूंगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मतलब अभी आप लोगों के लिए गाना चला रहा हूँ रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
2: अर्जुन नहीं होता अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
2: इरशाद
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
2: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा
1: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
2: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
2: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता।
2: अरे यार वो तुम्हें कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो मैं तो चली गई मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो हेलो टिकट कटवा लेना।

देखो पूरे के पूरे 3 घंटे आप सभी के साथ हो चुके हैं और खूब सारी बातें हम लोगों ने कर ली, मगर अभी ना मैं एक बात बोलना चाहूंगा और वो ये है कि एक अंग्रेज आया था नोएडा दिल्ली NCR घूमने के लिए। भाई उस बंदे ने एक छोटा सा घर रेंट पे लिया और उसने वीडियो डाली बकायदा रोड के किनारे खड़े होकर कि ये लोग खड़े हैं और ये लोग गंदगी फैला रहे हैं। एंड ये सच्चाई है कि हम लोग खुद से ही गंदगी फैलाते हैं और आप लोगों ने भी बहुत बार नोटिस किया होगा कि आप बेवजह कुछ भी चीज़ आपने अगर खाई है, बिस्किट का पैकेट ही क्यों ना हो, हम लोग अक्सर रोड के किनारे फेंक देते हैं। तो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी लिसनर मुझे सुन रहा है, प्लीज़ ऐसा ना करें जनाब, ना करें। हमारा ही देश है, हमें ही साफ़ सुथरा रखना है और ऐसे ही धीरे धीरे अगर हम लोग चीज़ों में चेंज लाएंगे, अपनी आदतों में सुधार लाएंगे तो हमारा देश और भी ज़्यादा स्वच्छ और भी ज़्यादा साफ़ सुथरा हो जाएगा। बस इसी के साथ रेडियो महारानी से मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूंगा आप सभी से फिर से कल शाम 5 से 8, ये आपसे वादा करके जा रहा हूँ, मिलते हैं कल शाम को। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और वापस आएगी गीत विद इश्कबाजियां, तो सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। अभी फिलहाल आप सभी के लिए गाना अप टू यू बाय न्योली वाला, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: सड़क सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना के हैं तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी
3: 89.6 FM
4: कुछ हटके।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later,
0: माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाए अपना ब्राइट फ्यूचर।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यूदा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
2: अपना दिल तो आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ रात बाकी बात बाकी में।
2: बहुत भोला है बेचारा, मैं जाने किसे पे आएगा।
3: सदा सुरक्षित रहो, अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
4: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं, जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल वॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

0: चल अर्जुन शुरू हो जाओ।
1: हाँ तो अर्ज किया है?
0: अर्ज अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इंस्टार्ट।
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी इसी लायक।
1: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स ओटीपी सब दे दूंगा।
2: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे, बाय। हेलो।

बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूँ भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later,
0: मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाए अपना ब्राइट फ्यूचर।
3: को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यों दा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
2: मैं अपना दिल को आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ। रात बाकी बात बाकी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।
3: पुष्पा, आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
2: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए है।
1: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
3: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

save life. Of course, पर save water, save cinematic vibe. अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते. जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते. वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता. और ये गाना कभी नहीं बन पाता. रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना. जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है. रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी.

खैरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: यहाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ले हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, EMI पे।

0: बोलते रहो। हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
1: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
0: बाय।
1: सुनो तो कहाँ चली।
0: बाय।

0: कोई हमसे।
1: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
1: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही बढ़ता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: सुन रहे हैं कृष्ण वाणी।
1: श्रीमद् भगवद गीता से हमें सीखने को मिलता है कि परिवर्तन निश्चित है और यही संसार का नियम है, यानी कि आपका जीवन कभी भी बदल सकता है। और जैसे सर्दी के बाद गर्मी और गर्मी के बाद वर्षा ऋतु, ऐसे ही चलता रहता है। इस प्रकार संसार में परिवर्तन निश्चित है और यही संसार का नियम है।

0: विचार शक्ति जितनी ऊंची होती है व्यक्ति उतने ही ऊंचे कार्य करता है। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वक्ता देवी चित्रलेखा जी के विचार।
1: कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
2: नारद जी आए हैं, देवी लक्ष्मी आई है, बाबा भोलेनाथ भी आए हैं। बाबा भोलेनाथ जी पूरे परिवार के साथ आए, लेकिन अब इनको वहां जगह कौन देगा जाने के लिए? इतनी भीड़ भाड़ में कोई नहीं देखता कौन वीआईपी है कौन नहीं है, सबको ही लगता हम ही आगे बढ़े। दर्शन नहीं करने दिया। बाबा जी ने सोचा अब तो दर्शन नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, दोबारा दर्शन करने आएंगे। तो बाबा भोलेनाथ दोबारा दर्शन करने आए, कब? जब भगवान 4 दिन के थे। बड़ा अद्भुत वर्णन है, ध्यान से सुनिएगा। आज ठाकुर जी 4 दिन के हैं, 4 दिन का लाला है, बड़ा सुंदर रूप है। भोलेनाथ जी पहुंच गए, आकर के मैया के द्वार पर सबसे पहले कैलाश से निकले हैं बाबा भोलेनाथ। कैलाश से निकल ही रहे थे कि इतने में ही पार्वती जी ने आवाज दिया, अरे अजी कहां जा रहे हो? माताओं बहनों का ये थोड़ा सा स्वभाव होता है, जब पतिदेव किसी काम से बाहर निकले ना तो भले बात नहीं करेंगे, लेकिन जब निकलने ही वाले होंगे तब जरूर कहेंगे, अजी जा रहे हो, अच्छा आते टाइम 2 किलो आलू ले आना। तो चलते टाइम मैया टोकती जरूर है। तो भोलेनाथ जी बोले, कहीं नहीं, वो क्या है ना, लाला का जन्म हुआ है नंद महल, तो उनके दर्शन करने जा रहा हूं। पार्वती जी बोले, ऐसे दर्शन करने जा रहे हो? रूप देखा अपना, कोई घुसने नहीं देगा, नंद बाबा की सिक्योरिटी बड़ी टाइट रहती है, आपको मालूम है वहां कोई घुस नहीं सकता बिना आज्ञा को। ऐसे रूप से आपको कोई घुसने देगा वो तो भला हो, जो ब्याह पे आप ऐसे आए हो, मेरे माता पिता ने आपको ऐसे ही ब्याह दिया। क्योंकि भोलेनाथ जी तो भोलेनाथ जी है, ब्याह में देवताओं ने खूब काम हारा, थोड़ा आज तो थोड़ा सा ड्रेसअप चेंज कर लीजिए। ऐसे कैसे कर लेंगे, किसी को अपनी छोरी देनी हो तो ऐसे ही दो जैसे हम हैं, हम किसी के लिए नहीं बदलने वाले। वही सांप सब पूरे गले में लटकाए, बोले महाराज कम से कम घोड़े पे तो बैठ जाओ, और कुछ नहीं तो कम से कम घोड़े पे बैठ जाओ। बाबा भोलेनाथ कहते हमको घोड़े वोड़े की जरूरत नहीं, हमारा नंदी है, यही हमारा साथी और यही अंत तक साथ देगा, हम तो इसी पे बैठ के जाएंगे। नंदी पे बैठ गए, और नंदी पे भी बैठे उल्टा मुंह करके, इधर की तरफ मुंह करके, और बारात लेके जा रहे। देवताओं ने सोचा कि अजी ये तो शंभू है, इनको तो ना सम्मान से मतलब ना अपमान से, लेकिन अपमान तो हमारा होगा कि देखो देवता किसकी बारात में आए। इसलिए देवताओं ने क्या किया, बोले ये पीछे आते रहेंगे, हम सब पहले पहुंच जाते हैं, और दूल्हा को छोड़ के ही सारी बारात आगे बढ़ गई। बाबा भोलेनाथ ने देखा ये तो छोड़ के चले गए हमको, अब हमारी बारात का क्या होगा? भोलेनाथ जी ने कहा चिंता मत करो, हमारे पास बारात